क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है। आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू है, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के चार चार हाथ हैं, किसी के दस दस पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बरातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे हैं, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आ गए दामे। बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख ले कैसे दामाद जी।

सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कही उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है कहूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तो महाराज उससे तो कोई लाभ नहीं। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के, और बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई जाके देखा, बोला मैया कैसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी। ऐसो कौन सो बाबा जी आगो? बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए हैं। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है? अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर ते तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो को दे दूंगा, तू कहेगो मुकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी? इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर? तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो। अरे मैया तू नहीं जाने तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहां बताऊं मैया आगे

भविष्य में चल के तो वो 100 बनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली, बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचे हो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप मापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है। भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले, नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली, या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले, ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली, देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटेली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले, तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली, बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले, कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली, मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले, नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल बालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली, छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, बड़ी हटीली अम्मा है यू, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम ही, हम भी यही बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली, बैठो रे, मैं अपनो काम धंधो संभाल। मैया भीतर चले। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो 4 दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले, हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले, क्या? बोले, रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई, आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है, तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली, गोपी कहा करूं? बोले, रो रहे हो है तो याकू कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए।
मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई तब भी चुप नहीं हुए, मैया ने पल्ला में झुलाए तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली, मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे। काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली, अब कहा करे। बोले, कहा करे का नजर उतारो या की। बोले, कैसे नजर उतारे। बोले, जा रसोई थे वो लेके आ, राई नून लेके अभी तक। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारने के बाद तो काना कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली, मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो, या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। मैया बोली, कहा बीमारी है। बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का। बोले, मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया, अब वा भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी, भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी। बोले, मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई यहाँ तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारे हो। तो गोपी, अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले, मैया टेंशन मत ले, मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ दूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी, नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है। तो जाके पूछी, बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत उतारने आते हैं। बाबा बोले, पहले ये बताओ किसको चढ़े हैं, उस पे डिपेंड करता है। बोले, हमारी मैया है ना, वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे हुए वालों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले, हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका, अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले, अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते। अरे गोपी, मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है, अभी लेके आए एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती, मैया ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो, एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी। बोले, मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठे हो। मैया बोले, ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको। गोपी बोली, मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो,

कपड़ा ढक दे। कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई, और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है। बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली, हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहे हो, हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले, क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगा। मैया बोली, ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले, तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा, रुक रुक जा रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्ने ने थोड़ो संवार के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले, मैया अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने। मैया तोकु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तोकु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे और तोर मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली, बाबा मैंने तो कु काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो या के ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले, मैया तू बता तो कु तेरे निया कहा चाहिए? बोले मो को तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले, 4 दिन को तेरो छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो। तो बाबा तू ही बता, छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है?

अरे मैया, या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब मैया, तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले, कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा, न्यू सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा, काय को पागल बना रहे हो? या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो? कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा, मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया, अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती, ना ना बाबा, तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है, रह रहे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराज

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं

सोचिए, महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद्गीता।

0: अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो कुछ भी संभव है।
1: ये मत कहो खुदा से।
0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गाइड बीके शिवानी जी के विचार।
1: ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
2: क्या कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ और थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खुल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए, अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई, हमने ध्यान नहीं रखा तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से है, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते हैं एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड, तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है, फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए और कैसा जाए, एक जाए और कैसा जाए, पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वही इक्वेशन थ्योरिटी में भी तो अप्लाई करेगी। दैट इज व्हाई व्हेन वन चेंजेस चेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्ले, नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है, एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट नाइम लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है। हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है, लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है, अच्छा आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका, बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद, अभी देखते हैं, नए नए आए ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही, चार दिन और बीते तो सही, दे तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वहीं ठीक था आश्रम में, तो बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है, नहीं फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हमको भी जाना है वहां पे, हाँ बहुत पीसफुल था अभी वापस हमें 3 दिन। वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर 3 पीसफुल डेज, हम यहाँ से विधि सीख कर जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन जो फोल्डर खोला फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं, अटेंशन, कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है, रोज, चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा. नो, इट इज डेली. बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल ऑल्सो हैज टू बी नरिश्ड डेली. हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं. तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग. क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे, कमाने में इतने बिजी थे कि हमने रुक कर इसको कभी नरिश ही नहीं किया. आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहां भी जो लोग मिले, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखे. हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर. रियली इट्स एन एपिडेमिक. एवरीवन सेज द सेम लाइन एंड वो इतना डीप बिलीफ सिस्टम बन गया है कि वो एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं वेरी बिजी, टाइम नहीं मेरे पास. कभी आप सोचो छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से फील करते हैं उनके जीवन में कमी है. सो ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी क्योंकि थकी हुई हालत में सारा काम कर रही है. तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है. वो एक घंटा निकालना पड़ता है सिर्फ थोड़े दिन के लिए. जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो एक घंटा निकाला, तो ये आत्मरूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है. जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो फिफ्थ फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन. जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा फिफ्थ फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम, कोई कुछ कहता है ज्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं है. दो बातों में बहुत फर्क है. और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम टाइम टाइम टाइम पहले से कई गुना ज्यादा मिल जाता है. आप जब यहां से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां भाई बहने आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिसेस संभाल रहे हैं. जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते थे टाइम नहीं है. अब उनके पास इतना टाइम है कि वो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, आकर सेंटर भी संभालते हैं और सेवा भी करते हैं उनकी, जिनको वो जानते भी नहीं है. इतना टाइम आ जाता है. क्यों आ गया? यहाँ का ध्यान रखना शुरू किया, नेगेटिव वाइब्रेशन घटनी हो गई. जैसे यहाँ की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहां लैंड करते हैं, उनको खांसी होने लगती है. पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे ही पोल्यूशन हटी, सफाई में आए, स्टैमिना बढ़ जाता है. आप फिजिकली यहां काम करेंगे, थकावट कम होगी. सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहां और यहां, थकावट तो सारा दिन लगेगी. एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं. और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा. तो यहां से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे, चार्ज्ड. इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए, नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट, इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है. ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है. कईयों का तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है, पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे. फिर कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा। सो इट इज नॉट ईजी, ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है, ऐसे नहीं तीन दिन में। तीन दिन में वी आर गोइंग टू लर्न द वे ऑफ डूइंग इट, नॉट दैट इन थ्री डेज इट विल गेट चार्ज्ड, नो। लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको एक घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज्ड। हमारे यहाँ जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन, इसका क्रिएटर कौन, कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स, आवर सब। जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं, दूसरों पे। हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ। ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसकी इक्वेशन को हमें आज चेंज करके जाना है। हमें गुस्सा कौन दिलाता है? जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से इरिटेट, पावर सारी किसको दे दी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम पीसफुल रहे? क्या ये पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे हम पीसफुल रहे? वो रूडली बात करे हम प्यार से बात करे, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? वो बहुत बहुत बहुत गलत करे हम अच्छे से बात करें, ये पॉसिबल है? और वो तो बहुत बहुत बहुत ही गलत कर दे और हम उसको दुआएं दें, ये पॉसिबल है? हाँ जी, नो, खड़े हो जाइए, नो। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। दे आर बिहेविंग रॉन्गली, वेरी बैड, रूडली, चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, एवरीथिंग। कैन वी बी नाइस, काइंड, रिस्पेक्टफुल? नो। व्हाई? व्हाई? लेट्स थिंक व्हाई। Why? अच्छा, उनके साथ जो खड़े हैं वो खड़े हो जाइए एक बार, जो साथ में बैठे। भाई सर, प्लीज स्टैंड, प्लीज स्टैंड। हाँ, एवरी वन विजुअलाइज वन पर्सन इन योर लाइफ, टू पीपल, राइट? टू पीपल, ही विल बिहेव हिज वे। सपोज ही शाउट्स राइट नाउ एट यू, कैन यू रिप्लाई रिस्पेक्टफुली? ओके, why no? Not possible. She is behaving her way. Can you respond your way? She is shouting. Can you be quiet? I can't be quiet. No. Who irritates you? She or you yourself? She irritates you. She irritates you. सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम, बैठिए। थैंक यू। दिस इज वन बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट अलाउिंग अस टू बी आर सेल्फ। नाउ ब्रिंग एनी वन पर्सन ऑफ योर लाइफ हियर, हियर, एंड यू आर हियर। ये उनका बिहेवियर है। Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my thoughts and feelings? Forget behavior, just thoughts and feelings. They are behaving like this. Who is creating my thoughts and feelings? Who is creating my words and behavior? Can they irritate me or do I choose to get irritated? Very good. That much clarity we need. Who chose the irritation? Me. Who chose the anger? Me. Who chose to get hurt? Me. Who created those thoughts? Me. What did they create? They created their behavior. What did I create? Is my behavior dependent on their behavior? It is dependent on me. All that I have to take care is, all that I have to take care is, when they do something which is their way, I have to respond my way. एक equation आज से change कीजिएगा, चाहे गुस्सा भी आ जाए, लेकिन जब गुस्सा आए तो ये नहीं कहना इनकी वजह से, because that is not true. बार बार कहने से कहने से कहने से क्या हो गया, हमने एक संस्कार क्रिएट कर लिया विच सेड एवरीथिंग आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ अदर पीपल। सिचुएशन ही ऐसी थी तो टेंशन तो होनी थी, तो टेंशन किसने क्रिएट की? सिचुएशन ने। उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, उसी सिचुएशन में चार लोग होते हैं, चारों को सेम टेंशन होती है? नहीं, ये एक सेम बिहेव करता है, चार लोग इस तरफ हैं, चार लोगों की फीलिंग्स एक जैसी होती है? नहीं। दिस इज स्टिम्युलस, दिस इज रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस इज इन देयर कंट्रोल, रिस्पॉन्स इज इन माई चॉइस। आज एक मुक्ति यहां जो चल रहा है, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर एवरी टाइम से दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई क्रिएशन। डोंट पुट द फिंगर ऑन पीपल और सिचुएशंस कि परिस्थिति और लोगों की वजह से मेरा ऐसा हो। ट्रू नहीं है ये बात। They will be their way. I will be my way. फिर आप चूज कर सकते हैं कौन सा वे आपको होना है, लेकिन एटलीस्ट ये ध्यान रखना होगा कि ये रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है, कौन चूज कर रहा है? मैं। गुलामी का जीवन नहीं जीना, दूसरों के व्यवहार के गुलाम। वो रोज अपना व्यवहार करेंगे, हम रोज डिस्टर्ब होंगे, तो हम उनके व्यवहार के गुलाम, हम उनके व्यवहार के गुलाम। स्पिरिचुअलिटी मेक्स अस इमोशनली इंडिपेंडेंट। लोग आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता। वाइफ कहती है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगना चाहती। पैसे किसी से मांगना नहीं चाहते, खुशी मांगने के लिए सारा दिन खड़े, प्लीज बी नाइस टू मी सो दैट आई विल बी हैप्पी, सारा दिन खड़े। इमोशनली इंडिपेंडेंट मीन्स फॉर मी टू बी हैप्पी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। वो अपना व्यवहार करेंगे, हम अपना व्यवहार करेंगे। हम रिएक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज नहीं किया है। तो जब वो नेगेटिव फाइल खोलते हैं तो हम भी इमिजिएटली कौन सी फाइल खोल देते हैं? नेगेटिव। और ब्लेम किस पर डाल देते हैं? ब्लेम किस पर डाल देते हैं? एक टीम में पांच लोग हैं, सुबह सुबह एक जना एंटर किया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम सर्दी लेकर वो सुबह सुबह ऑफिस आ गया, शाम तक बाकी चार में से भी एक को हो गया। तो वो एक ने उसको क्या कहा, मैं बीमार किसकी वजह से हो गया, क्या ये बात सच है? बाकी तीन क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। मैं क्यों हुआ? क्योंकि मेरा वीक है। लेकिन मैंने ये नहीं रियलाइज किया मेरा वीक है, मैंने कहा उनकी वजह से मुझे खांसी हो गई है, तो मैंने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। सिमिलरली वो पांच लोग थे, एक एंटर हुआ, मूड खराब है, सुबह सुबह इरिटेट हो रहा है, सुबह सुबह चिल्ला रहा है लोगों के ऊपर, मूड ही खराब है, घर से झगड़ा करके आया, उसके मूड की वजह से मैंने भी रिएक्ट कर दिया और मैंने कहा इसकी वजह से मेरा भी मूड खराब हो गया। ये नहीं कहा मेरी शक्ति घटी हुई थी तो मैंने भी रिएक्ट कर दिया। ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर हाउ वी थिंक एंड फील इज द बिगेस्ट इल्यूशन। तो एक इक्वेशन, जो भी यहां चले उसका जिम्मेवार कौन? हम। जब हम पावर अपने पास रखेंगे हम चेंज हो सकते हैं। जब हम कहेंगे उनकी वजह से तो हम

खुशी, सेहत और रिश्ते घट गए, बाकी चीजें बढ़ गई। और फिर इतनी इल्यूजन में रहे कि हमने सोचा जितनी चीजें बढ़ जाएंगी उतने हम हैप्पी होंगे। दैट वॉज अनदर वेरी बिग इल्यूजन। तो काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना? काम करना, काम करवाना, लेकिन सब कुछ करते हुए किसका ध्यान रखना? ये बैटरी कैसे रहनी चाहिए? चार्ज्ड। ये ग्लास है, भरा हुआ है। इस पूरे हॉल में चलना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, ऐसे ऐसे करके स्टेज पे वापस आना है। शाम को ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। सुबह निकलना है, सारा काम करना है, शाम को वापस आना है, ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। हो सकता है? आप में से कौन कौन कर सकता है? ये सीढ़ी से उतरना है, पूरे हॉल का राउंड लेना है और ये सीढ़ी से वापस आना है विद ग्लास फुल। कौन कौन कर सकता है? सब नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे सब। देखो आप पीछे, हाथ ही नहीं उठाते। कर सकते हैं ना? करने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ करना क्या होगा? प्रायोरिटी। नींबू चम्मच खेला था स्कूल में? गुड। भागना था, भागना था। कई बार तो दो लोगों के पाव भी बांधे गए थे साथ में, लेकिन ध्यान किस पे रखना था? नींबू गिरना नहीं चाहिए। इवन अगर आप फर्स्ट आ गए लेकिन नींबू गिर गया, हम हार गए, क्योंकि हम भागने पे ही फोकस कर रहे थे। नींबू तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था और हम एंड में पहुंच गए। हमने कहा ये आई केम फर्स्ट, उधर उसने कहा डिस्क्वालिफाइड। क्यों डिस्क्वालिफाइड? बोले नींबू तो पहले गिर गया था। वो नींबू कहाँ है? वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है? नींबू यहाँ है। भागना है, बहुत भागो। जितना अभी तक भाग रहे थे उससे भी फास्ट भागो, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है, भागते हुए नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू नहीं गिरना चाहिए। एंड डेफिनेटली दूसरे को नहीं ब्लेम करना, मेरा नींबू गिरा दिया। नाउ वर्क, यहाँ दैट इज प्रायोरिटी इन लाइफ। ये प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। वी हैव टू नो व्हाट इज इट देयर वी आर रनिंग। हम भाग रहे हैं लेकिन भागते हुए खुशी गिर गई। कभी कभी तो सुबह सुबह ही खुशी गिर जाती है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकले। फिर रास्ते में ट्रैफिक हो तो दूसरी जगह खुशी वहां गिर जाती है। रोज उसी

स्कूल के बच्चे सुसाइड की बात करते हैं, ये कोई सक्सेस की निशानी है हमारे समाज की? ये सफलता है? इज दिस सक्सेस? नो. Why? Because last few years what we did, we just kept running without taking care. Now what we are going to do, we are still going to run, but with taking care. यहाँ ध्यान रखते हुए भागना है, और फिर वो जो भागना भी होगा ना, उसको enjoy करेंगे. ये ध्यान रखते हुए कि ये समान है, ये सुकून है. यहाँ समान मिलता है, यहाँ सुकून मिलता है. शाम को हमें सिर्फ समान कमा के घर नहीं आना है. क्या कमा के घर लाना है? सुकून कमा के घर लाना है. बच्चों को चीजें नहीं देनी, सिर्फ परिवार को सुकून देना है. एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑफिस से हर एक जो घर जाए शाम को, वो सुबह जितना खुश आया था उससे ज्यादा खुश शाम को जाना चाहिए. पीपल शुड गो होम हैप्पियर देन वॉट दे केम इन द मॉर्निंग. Then we are sending happy parents home. We are sending happy parents home. And if we send happy parents home, next day morning वो और happy आएंगे. और उसके अगले दिन वो और happy आएंगे. और day by day हमारी खुशी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. आज क्या हो रहा है? Day by day हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है. तो उसके लिए जब हम change होंगे, हमारा घर का वातावरण change होगा, हमारा work culture भी change हो जाएगा. हमारा लोगों के साथ व्यवहार, बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा. सिर्फ अगर हम एक रोज एक घंटा दें, बहुत लोगों के जीवन बदल जाते हैं. एक की नहीं बदलती, इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच हैज मल्टीफोल्ड रिजल्ट. बहुतों की जीवन बदलेगी अगर एक ने अपनी बैटरी को क्या करना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया. तो एक की बैटरी से औरों की बैटरी भी क्या होती जाती है फिर, और डिस्चार्ज बैटरी से क्या हो जाती है औरों की बैटरी.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: या सारी गाल

शानदार सुरक्षा के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर इस शो को, जहाँ पर आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। आपके शहर में आज वेदर और ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी लेकर आई हूँ, साथ ही सोशल स्यापा से लेकर क्या कुछ खास इस बारे में बात करेंगे। तो बस एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर। ये ट्रैक मिलता है म्यूजिक

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ अर्जुनश्री आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो चलिए अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करी 37 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 14 मिलने वाली है और ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 56%। यानी कि डे होने वाला है सनी सनी। वैसे भाई मॉनसून आ चुके हैं और जैसे ही मॉनसून आए हैं ना, मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया। कभी भी आंधी तूफान बारिश लेकर आ जाते हैं, तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: डियर एल्डर्स, नेवर क्लिक ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। कभी अपने पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, OTPs एंड KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें। स्टॉप, थिंक एंड वेरीफाई।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। मेहनत, पेशेंस और लॉयल्टी का असली सिंबल डंकीज होते हैं। ये डंकी की अगर बात की जाए तो हार्ड वर्किंग एनिमल्स होते हैं। विलेज और रिमोट एरियाज में हमारे लिए ट्रांसपोर्ट सपोर्ट का काम करते हैं और इतना ही नहीं, हैवी लोड उठाकर लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर इन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। तो भाई आज के दिन ये मैसेज लेकर आया है, एनिमल्स के साथ काइंडनेस रखे, उनके केयर और वेलफेयर का ध्यान दे, वर्किंग एनिमल्स को रिस्पेक्ट करे। सो बस यही कहना चाहती हूँ, स्ट्रेंथ सिर्फ स्पीड में नहीं, कंसिस्टेंसी और पेशेंस में भी होती है। तो आज उन साइलेंट हेल्पर्स को अप्रिशिएट करें जो बिना कंप्लेंट के काम करते रहते हैं, और उनमें सबसे बेस्ट है हमारे डंकीज। कहीं भी अगर आपको डंकीज दिखे ना, तो बस जाके उन्हें प्यार केयर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि उनके पेशेंस और लॉयल्टी के किस्से दूर दूर तक फेमस है। साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
5: Dear elders, never click on links from unknown senders to protect yourself from social engineering attacks. कभी अपने passwords, bank details, OTPs and KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें। Stop, think and verify.

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

यहाँ हमें ऑफिस से हाफ डे तक नहीं मिलता और इस एम्प्लॉय को मिल गया इतना स्पेशल गिफ्ट। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे हंसले आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज का मैं सोशल स्यापा लेकर आई हूँ। ये सोशल स्यापा देख करना हर एम्प्लॉय का खून जलने वाला है, बिकॉज जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल तब अलग ही होता है जब कंपनी अप्रिसिएशन भी ग्रैंड हो। सो भाई, यहाँ पर एक इंसिडेंट आया है सामने, जहाँ पर चाइना की कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट और रिटेन करने के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव लेकर दिया है। जैसे कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि लॉन्ग टर्म लॉयल एम्प्लॉयज जितने भी है ना, उन्हें फ्री फ्लैट गिफ्ट किए जाएंगे। और भाई, इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है पूरा, जो भी एम्प्लॉय 5 साल अपने कंप्लीट कर चुका है इस कंपनी में, उन्हें एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी के अंदर रखा जाएगा और इतना ही नहीं, उन्हें फ्लैट्स दिए जाएंगे उनके ऑफिस के पास। साथ ही करोड़ की वैल्यू वाले होम्स हैं ये सारे, ऐसे वैसे घर नहीं है। सो भाई, बहुत ही अच्छा एक लेविश गिफ्ट इन्हें मिल चुका है। सो भाई, आज के सोशल स्यापा से हमें ये मैसेज जरूर मिलता है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी की वैल्यू जरूर करें, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस जरूर प्रोवाइड करें एंड अपने एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट जरूर करें। आई नो सैलरी इम्पोर्टेंट है, पर अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज को ट्रूली कनेक्टेड फील कराता है। ऐसे आइडिया सिर्फ वर्क प्लेस नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं। सो माई डियर लिसनर्स, अगर आपका बॉस खड़ूस है तो फटाफट से जाइए, उन्हें आज वाला इंसिडेंट बताइए और उन्हें ये भी बताइए कि एक एम्प्लॉय की लॉयल्टी को वैल्यू करना कितना ज्यादा जरूरी है, सो दैट कि उनकी कंपनी भी प्रॉफिट में आ सके। सो ऐसे ही सोशल से आपके साथ लाते रहूंगे, लेकिन ऐसे म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए प्यार से ट्रैक, बने रहिए रेडियो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा

0: आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आर्जे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। शो तो मैं वैसे सुबह ही लेकर आ गई थी 7 बजे, लेकिन अब लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए सोशल स्यापा। और आज का स्यापा ये है कि एक बार फिर से सिविक सेंस आ गया है ट्रेंड में। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हम सबने वीडियोस देखी थी जहाँ पर नॉर्मली लोग सिविक सेंस के बारे में बात कर रहे थे कि लोगों को सिविक सेंस के साथ साथ कॉमन सेंस भी नहीं है। एंड फिर से एक ऐसा कॉन्टेंट मैं लेकर आ गई हूँ जहाँ पर लोगों ने सिविक सेंस की फिर से बैंड बजा दी है। अगर बात की जाए कंटेंट की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कंटेंट के चक्कर में बेसिक सेंस भी भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें दो लड़के हाईवे के एक होटल के वॉशरूम में लिक्विड हैंड वॉश वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ये क्लिप देखकर लोगों ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है अपना, और साथ ही इसे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सीरियस डिबेट शुरू हो गई है। तो भाई यहाँ पर कुछ कंसर्न भी दिखाया, और कंसर्न ये है कि पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज ना करें, क्लीनिनेस और हाइजीन की रिस्पेक्ट करें, कंटेंट के लिए कुछ भी माइंडसेट ना रखें। और इतना ही नहीं, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये भी कहा लोगों ने ऐसे एक्शन सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं। और इसी के बिहाफ पर मैं एक मैसेज लेकर आई हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी सबकी होती है, उसका ख्याल रखें, हर चीज का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करना हर सिटीजन की ड्यूटी है। अवेयरनेस और बेसिक मैनर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वायरल होना इजी है लेकिन रिस्पॉन्सिबल रहना जरूरी है। तो अगली बार जब आप किसी पब्लिक प्लेस पर हो तो याद रखें, रिस्पेक्ट द स्पेस, रिस्पेक्ट द सिस्टम। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए आज का डे इस शानदार से ट्रैक के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो।

कभी आपने ये सोचा था कि हम ग्रैंडमा को भी रेंट कर सकते हैं? जी, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक और पर्पस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ, और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो जापान में ग्रैंडमा ऑन रेंट, ये एक नया ट्रेंड चला है जिसका आइडिया ना आपके दिल को छू जाएगा। जापान में एक ऐसी सर्विस काफी चर्चा में है जहां लोग ग्रैंडमा ऑन रेंट हायर कर सकते हैं, यानी यहां 60 से 90 प्लस साल के एक्सपीरियंस ग्रैंडमदर लोगों की हेल्प करती है घर का खाना बनाना, छोटे मोटे हाउसहोल्ड काम करने में, लाइफ एडवाइस देने में, और कभी कभी बस किसी की बात सुन लेने में। तो चलिए फिर से कहानी सुनाती हूँ। एक स्टूडेंट अपनी फैमिली से दूर रहता था, हॉस्टल की लाइफ, बाहर का खाना और बिजी रूटीन। सो ऐसे में एक दिन उसने एक इस सर्विस का यूज किया, ग्रैंडमा ऑन रेंट। तभी ग्रैंडमा उसके घर आई, ग्रैंडमा ने उसके लिए घर जैसा खाना बनाया, उसकी बातें सुनी और जाते जाते बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना बेटा। कभी कभी इंसान को सॉल्यूशंस नहीं, अपनापन चाहिए होता है, और ये अपनापन इस सर्विस ने दिलाया। सो कहना तो पड़ेगा टेक्नोलॉजी हमें कनेक्टेड रख सकती है, लेकिन हमारे ग्रैंडमा जैसा प्यार और एक्सपीरियंस हमें नहीं दे सकती, जो कि हमारी जैसी जनरेशन के लिए प्राइसलेस है। क्योंकि अगर बात करें ना आजकल की फैमिलीज की, तो ग्रैंडमा हर फैमिली में नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। सो यहाँ पर सोचिएगा जरूर, अगर इंडिया में भी ऐसी सर्विस शुरू हो तो सबसे पहले आप किस काम के लिए एक दादी या नानी को बुलाना चाहेंगे, ये जरूर बताइएगा। और बताने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहाँ पर ऑडियो भेजिए अपनी, और बताइए नानी या दादी किसका प्यार आपको चाहिए। और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो,
4: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
5: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
6: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: इस पंजाब

अगर आप भी इस गर्मी में कुल्फी देखते हुए सीधा ये बोलते हो ना एक और दे दो, तो बस बॉस आज की अपडेट आपके लिए। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो भाई आपको बताने का टाइम आ गया है इंडिया की कुल्फी और कुल्फी फालूदा को दुनिया का बेस्ट फ्रोजन डिजर्ट की लिस्ट में जगह मिल गई है और मटका कुल्फी ने भी इस लिस्ट में अपनी मिठास बरकरार बनाई रखी है। अगर कुल्फी की बात करूँ ना तो बचपन की गर्मियों की शाम सिर्फ और सिर्फ मटका कुल्फी से ही ठंडी होती थी। यानी गले में कुल्फी वाले की घंटी बज और बस घर से निकलते हम लोग कुल्फी लाने के लिए दौड़ पड़ते थे। ना कोई फैंसी आइसक्रीम चाहिए थी, ना कोई इम्पोर्टेड डेजर्ट चाहिए था, बस एक ठंडी ठंडी कुल्फी और दिन बन जाता था। और अगर बात करें ना कुल्फी की, तो कुल्फी को सिर्फ इंडियन आइसक्रीम कहना गलत होगा। ट्रेडिशनल कुल्फी को बनाने में ना बहुत मेहनत और प्यार लगता है। पहले धीरे धीरे दूध को पकाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, इलायची मिलाई जाती है और इसी रिच टेक्सचर और ऑथेंटिक टेस्ट की वजह से इसे दुनिया में पसंद किया जाता है। यानी अपने देश की कुछ चीजें सिर्फ टेस्ट नहीं, यादें भी सर्व करती है और ये साबित कर दिखाया कुल्फी। तो आज अगर मौका मिले ना एक कुल्फी जरूर खाइए और अपने बचपन की मीठी यादों को फिर से ताजा कीजिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए

0: इफेक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
1: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो अर्ज किया है?
1: अर्ज
2: अभी करते हैं, सुनो।
1: इरशाद,
2: कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
1: वाह वाह वाह,
2: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
1: अच्छा,
2: बस मेरी शायरी सुन लो।
1: फिर
2: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
1: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
2: अरे,

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी पॉजिटिव।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़ी बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाए चलती है, लेकिन रिलेशनशिप में जब छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बन जाते हैं ना, तब दिक्कत हो जाती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन जी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। दरअसल मैं आपके लिए कैसे इंसिडेंट लेकर आई हूँ जिसे कहा जा सकता है सोशल ज़ैपा। प्राइस की फाइट ने एक सीरियस मोड ले लिया। एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया जहां पर सिर्फ फ्राइज खाने पर ना कपल के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि ये सिचुएशन देखते देखते वॉयलेंस तक पहुंच गई। यानी कि ये सिर्फ बातों वाली लड़ाई नहीं थी, ये हाथापाई वाली लड़ाई। एंड देखते देखते जो कपल था उनमें से एक को हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। बेसिकली मैंने आपके साथ इस स्टोरी क्यों शेयर की, ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि छोटी बातों पर गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, सो कम्युनिकेट कीजिए एंड साथ ही ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। वॉयलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बन सकता। सो प्लीज अपने रिश्ते पे जरूर काम कीजिए। मस्ती मजाक अपनी जगह होता है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज और इमोशन को रिस्पेक्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है दोनों पार्टनर्स के लिए। सो इस चीज का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइब को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेयर लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा। रिकैलकुलेटिंग लाइफ, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो जैसी।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?

0: तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

फू आउट ऑफ कंट्रोल हो तो को करके गोल सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। वाकई सब कुछ ऑल इज वेल होने वाला है बिकॉज हम लोग आ गए वीकेंड में। वीकेंड की बात ही अलग होती है। वीकेंड में हम लोग सिर्फ चिल करते हैं, चिल के साथ रीस्टार्ट करते हैं, खुद को रीसेट करते हैं, फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, बैक टू नॉर्मल होने में अभी टाइम है। अभी आपके पास पूरे 2 दिन है, इस वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा अच्छे से, बहुत सारी मस्ती के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ, बहुत सारे सोशल व्यापार के साथ। फिर से लौटूंगी मैं, लेकिन कल नहीं, सीधा मंडे मिलेंगे आप सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। Oh,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिश समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडर लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: There's something about tonight.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हूं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहां दोस्तों बात करते हैं मौसम के बारे में, जहां 10:07 हो रहे हैं और बात की जाए इस वक्त की तो 34 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर का बना हुआ। आज भी बादल छाए रहने वाले हैं और बारिश के आसार हैं दोपहर होते को, देखते हैं बारिश आती है या नहीं, लेकिन संडे को जरूर कहा जा रहा है कि अच्छे खासा चांसेस बारिश के हो सकते हैं। वही बात की जाए AQI की तो AQI अब यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शहर का, शहर की हवा साफ सुथरी बिल्कुल। जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं आप लोग कारपूल कीजिए, जहाँ जहाँ आपको लगता है यार ऑफिस जाने कहीं जाए कारपूल कीजिए, जैसे कारपूल का ऑप्शन अपनाएं, गार्बेज ना जलाएं, वाटर फॉगिंग करें पार्क सोसाइटीज गार्डन में कि शहर की हवा को साफ सुथरा किया जा सके और एक्यूमेंटी बाकी चर्चा होती रहेंगे उस पर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ बात करते हैं दोस्तों इस वक्त जहाँ आप सब जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की अगर बात की जाए तो उसके आवेदन की प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है, इसके साथ ही साथ अब एडमिशन की तैयारी जहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस लिंक एक्टिव कर दिया। स्टूडेंट जहाँ जाकर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन में कोई भी ऑब्जर्वेशन लगा हुआ है, ऑब्जेक्शन है, तो उसे सैटरडे तक दूर करना होगा। इसलिए ऑब्जेक्शन दूर करने के लिए आपके पास अभी टाइम है, जहाँ वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद ही उसे मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो सभी को ये इंफॉर्मेशन आगे तक पहुँचाएं कि विद इन अ वीक अगर आप स्टेटस पर चेक कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन को कंप्लीट कीजिए जैसे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आंसी ना चुक जाए। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्म फ्लेवर से पहले फरीदाबाद। यहाँ बात की जाए साइबर फ्रॉड्स, जिसके आप सब जानते हैं कि आए दिन साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं कि कभी आपको अननोन नंबर से लिंक्स आ रहे हैं, आप लिंक पे क्लिक मत कीजिए, एपीके फाइल्स आ रही हैं ग्रुप्स में किसी अननोन नंबर से, उसे ओपन ना करें। सोशल मीडिया पर अगर आपको डिस्काउंट रेट्स पर कुछ प्रोडक्ट मिल रहे हैं या फिर कहीं की ट्रिप प्लान हो रही है, कुछ भी चीज़ें ऐसे या फिर कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा, ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें, अनवांटेड नंबर्स, अनवांटेड लिंक्स, अनवांटेड फाइल्स आपके साथ स्कैम हो सकता है। जी हाँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों से सावधान रहें और बाकी अपने फ्रेंड्स फैमिली और अदर पर्सन्स को भी अवेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो हम साइबर फ्रॉडर्स को हरा सकते हैं। बाकी ऐसे भी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत अटैक ऑन रेडियो महारानी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदो तेरे मोड़े उते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोनिया भी लगन गियां फे बालियां, गला नाले

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। दोस्तों आज फिल्मी गलियारे में फिल्मी पिटारे में बहुत ही चर्चाएं करने वाला कि इस वीकेंड कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार। कहीं होगा रोमांचिक और एक्शन का डबल डोज, तो कहीं होने वाले हॉरर थ्रिल सस्पेंस से भरपूर कहानियां। न डेब्यू नई जोड़ियों के डेब्यू, कुछ का हुआ सिल्वर स्क्रीन पर आगाज, तो कुछ हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आउट। हिंदी सिनेमा से लेकर के साउथ इंडस्ट्री की कहानियां, तो कहीं होगा पंजाबी गानों का तड़का, तो कहीं होगा हॉलीवुड का सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर डबल डोज। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूँ सिनेमा के गलियारे से कि कौन सी कहानी अच्छी खासी हाइप क्रिएट करती नजर आ रही है, ये भी बताऊंगा। लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

उसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करते हैं एक्टर राइटर अनिल विशेष अपनी हिंदी बॉलीवुड फिल्म डेब्यू एक एक्शन ड्रामा से करने वाले हैं। जी हां, जिसका मेन शूट अक्टूबर 26 से शुरू करने की प्लानिंग है और फिलहाल फिल्म का टाइटल और डायरेक्टर दोनों ही सीक्रेट रखे गए। कहा जा रहा है कि बिग स्केल एक्शन ड्रामा होने वाली है जहां अनिल विशेष के साथ एक मेल एक्टर और फीमेल लीड इंपॉर्टेंट किरदार में होने वाले। प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग पर काम चल रहा है जहां पर अगर बात की जाए अनिल विशेष पहले ही मेजर और अपकमिंग डकैत और लव स्टोरी जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हिंदी बेल्ट में स्ट्रांग रिकॉल बना चुके हैं। अब देखते हैं आने वाली मेजर एक बढ़िया एक्शन ड्रामा कहानी क्या धमाल मचाएगी और कौन से एक्टर्स होने वाले हैं, डायरेक्शन किसकी होने वाली है, किस और ज्यादा नजर आएगी ये कहानी, इसका रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
3: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां हम बात करते हैं दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जो ओटीटी पर पति एक्का पति पत्नी और वो दो तीन में फिल्म आ चुकी हैं और जिन पर रामचरण, सनी देओल और आयुष्मान खुराना के फैन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। ये सभी कहानी वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप उठा सकते हैं, जहां सिल्वर स्क्रीन के बाद अब देखते हैं ओटीटी पर इनका क्या दबदबा होगा। पहली की बात करें तो प्रीमियर लीग तेलुगु कहानी, इसको साउथ लैंग्वेजेस हिंदी डब भी लेटर रिलीज किया गया, रामचरण जानवी कपूर। वहीं इक्का की बात की जाए तो यहाँ पर सनी देओल, अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं। कोच रूम ड्रामा लीगल थ्रिलर कहानी, पति पत्नी और वो दो की बात की जाए तो इस कहानी में आयुष्मान खुराना, सारा रकुलप्रीत, वामिका गब्बी नजर आ रहे। रोमांचिक कॉमेडी ड्रामा कहानी, इन तीन कहानी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस वीकेंड पे लुत्फ उठाई। बाकी चर्चाएं तो करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं आवारापन 2 के बारे में। जी हाँ, आवारापन का सीक्वल और इसका गाना ये जुनून। जी हाँ, वे जुनून ये रिलीज हुआ और जहाँ इमरान हाशमी के इस सीक्वल के म्यूजिकल जर्नी की ऑफिशियल शुरुआत। सॉन्ग में इमरान के साथ वीडियो में दिशा पचानी और फ्लैशबैक ग्लिम्स में श्रिया सरन की झलक भी दिखाई गई। वे जुनून की अगर बात की जाए तो यहाँ पे म्यूजिक मिथुन का है और लिरिक्स सैयद कादरी। सिंगर सुबोध शर्मा इस कहानी को लेकर के आ रहे हैं गाने को और ये वाइब की अगर बात की जाए तो विशेष फिल्म स्टाइल रोमांचिक दर्द भरा ट्रैक जो कि एक बेहतरीन वाइब क्रिएट करता नजर आ। अवरपन के सीक्वल को 14 अगस्त को रिलीज किया जाने वाला है सिनेमाघरों में। देखने क्या धमाल मचाएगी ये कहानी। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी उससे पहले कॉर्ड

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आएंगे लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियार से। प्रभु और नागार्जुन के साथ उनकी माइलस्टोन फिल्म किंग 100 में विलन का रोल कर रही है और ये लगभग 28 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। ये नागार्जुन की 100वीं फिल्म है जिसे फिलहाल 100 किंग नाम से रेफर किया जा रहा है। फिल्म का डायरेक्टर कार्तिक कर रहे हैं और ये एक एक्शन एंटरटेनमेंट के रूप में डिस्क्राइब की जा रही है। कहा जाए कि तब्बू फिल्म की प्रिंसिपल विलन होंगी जो उनके लिए एक रियल फुल फ्लेज नेगेटिव रोल होने वाला। पहले उनकी और नागार्जुन की पेयरिंग मोस्ट रोमांटिक थी लेकिन इस बार वो उनकी अगेंस्ट खड़ी दिखेंगी जिससे उनकी ऑन स्क्रीन जाने का बिल्कुल नया फ्लेवर लेते नजर आएगी। तब्बू नागार्जुन ने पहले निन्ने और आविदा माँ जैसे फिल्म में काम किया था जिनकी केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई। 28 साल के गैप के बाद लगभग ये कहानी अब फिर से सबके सामने आने वाली है। देखते हैं क्या धमाल मचाएगी तब्बू और नागार्जुन की ये पेयरिंग। बाकी चर्चा होती रहेंगी उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। या दोस्तों आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें संजोली भाटिया जी, रेडियो महारानी की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप यहीं खुश रहें, मुस्कुराती रहें और अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें और सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए सिनेमा के गलियारे की तो यहाँ पर एक बेहतरीन टीजर रिलीज हुआ। अमित राय की नई फिल्म ओ माई डॉग का टीजर रिलीज हुआ जिसमें इंसानों और कुत्तों के बीच बिना एक बेहतरीन भावुक कहानी दिखाई। टीजर की शुरुआत की अगर बात की जाए तो अमिताभ बच्चन के मशहूर गाने मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो से होती है और यहीं इन पेट्स और इंसानों के बीच का कुछ अनोखा बॉन्डिंग दिखाई गई। फिल्म के डायरेक्टर अमित राय जो पहले OMG 2 कर चुके हैं और ये उनकी अगली फीचर मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी लीड किरदार में। फिल्म का टैगलाइन जैसा मैसेज है वैसे ही टैगलाइन, अगर आपके पास डॉग है तो ये फिल्म जरूर देखें, अगर नहीं तब तो और भी जरूर देखें। यानी कि पूरा फोकस पेट्स पर फोकस दिया गया कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग बन जाती है हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह। तो ऐसे ही कुछ कहानी दिखाई गई है, बाकी ऐसी चर्चा करता रहूंगा। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

यानी के साथ एक बार फिर से लौटा हूं लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यार दोस्तों बात करते हैं अब सिनेमा के कलंदर में, जहां आज इंडस्ट्री एक बहुत बेहतरीन स्टार अपना बर्थडे मना रहे हैं। आज बर्थडे उस एक्टर का जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान दी और बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा। एक ऐसा कलाकार जो हर रोल में जान डाल देता है, चाहे हीरो हो, विलन या पुलिस ऑफिसर, हर कैरेक्टर को वो अपने अंदाज में यादगार बना देते हैं। आज बात कर रहा हूँ वर्सेटाइल एक्टर रवि किशन की। सबसे पहले तो बर्थडे है, तो बर्थडे विशेस फ्रॉम रेडियो महारानी। बाकी इनके बारे में बहुत चर्चाएं आज करने वाला हूँ, लेकिन सुनाऊंगा उससे पहले कुछ और खूबसूरत गाने।

हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा है लेकर के शो यानी कि फिल्म ही फ्लेवर। और दोस्तों सिनेमा के कैलेंडर में हम बात कर रहे हैं आज रवि किशन, जहां उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मुंबई तक का रवि किशन का सफर आसान है। सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, शुरुआत छोटे रोल से हुई लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर वो भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हो गए। इसके बाद बॉलीवुड और साउथ फिल्म्स में भी उन्हें अच्छा खासा मजबूत पकड़ बनाई। रवि किशन की यादगार फिल्मों की और टीवी शोज की बात करें तो तेरे नाम, लक, मुक्काबाज और लापता लेडी जैसी कहानियां। टीवी पर बिग बॉस के पहले सीजन में उनकी पर्सनैलिटी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। रवि किशन हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में भी काम करके सबका दिल जीत चुके हैं, जो कि उनकी वर्सैलिटी को दर्शाता भी है। बाकी ऐसी भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान में माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: चलिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात कर रहे हैं आज रवि किशन। इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात कर रहे हैं आज रवि किशन साहब की, जहाँ एक्टिंग के साथ साथ रवि किशन पब्लिक लाइफ में भी एक्टिव हैं और अपने अलग अंदाज की वजह से हमेशा चर्चा में। उनका देसी स्टाइल, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और एनर्जी पर्सनैलिटी उन्हें हर जनरेशन के बीच पॉपुलर बनाती है। आज भी जब भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़े स्टार्स की बात होती है तो रवि किशन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आप बताइए, रवि किशन की कौन सी फिल्म या रोल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तेरे नाम, मुक्काबाज या फिर लापता लाडीज या फिर लापता लेडीज के अलावा कोई और? तो बताइए जो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी, लेकिन आज आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा। तब तक सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स एंट्री मारते ही सुपरस्टार बन जाते हैं और कुछ सालों तक ऑडियंस के दिल में क्वाइटली जगह बनाते रहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जिमी।

हमेशा के लिए चेंज कर दी। मोहब्बतें, राज आर्यन का वायलिन और उसके सामने एक इनोसेंट लवर करण। जिमी शेरगिल स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं करते थे, वो बस नेचुरली फील होते थे। और कैसे बने वो सबकी फेवरेट, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: ये बॉलीवुड का सबसे अजीब रूल है। ऑडियंस आपको प्यार कर सकती है, फिर भी इंडस्ट्री आपको सुपरस्टार नहीं बनाती। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन चॉकलेट बॉय जिमी शेरगिल की। मोहब्बतें के बाद सबको लगा ये नेक्स्ट बिग रोमांटिक हीरो है। लुक्स थे, चार्म था, एक्टिंग भी थी, लेकिन 2000s का बॉलीवुड अलग था। वहां लाउड हीरोज चल रहे थे, जिमी सटल थे, रियल थे, और शायद इसी वजह से वो रेस में पीछे रह गए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, ऑडियंस का ट्रस्ट। चाहे मेरे यार की शादी है हो या फिर तनु वेड्स मनु, स्क्रीन पर आते ही फील आता था ये बंदा जेन्युइन है। जिमी शेरगिल को लोगों ने कभी वर्शिप नहीं किया, लेकिन कभी इग्नोर भी नहीं किया। शायद इसीलिए वो आज भी किंग होकर भी किंग नहीं है। करेंगे जिमी शेरगिल के बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: पाकर छोड़ दूं किसी चीज की ग्रीड को।

पर गहरे कानेड़े डीप कोने मेरे कमरे में डंगा डंगा क्लीन एंड नीट कोने मैंने रात ने सुननी बीटे मेरे तो लीड कोने आई एम जीओडी आना कदे मेरा पीक कोने स्प्लेंडर पे बैठ जा गोरी मेरे तो जीप कोने।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

बॉलीवुड हिस्ट्री में शायद कोई एक्टर इतनी बार ऑलमोस्ट सुपरस्टार नहीं बना जितनी बार जिमी शेरगिल बने थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। ऑलमोस्ट बिगेस्ट रोमांटिक हीरो, ऑलमोस्ट टॉप स्टार, ऑलमोस्ट लीड एक्टर एवरीवन रिमेंबर्स। और फनी बात, उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया, वो साइड रोल्स भी सेम सिंसेरिटी के साथ करते थे। और फिर इंटरनेट ने एक जोक बना दिया, जिमी शेरगिल हर मूवी में लड़की लूज कर देता है। ऑडियंस हंसी, लेकिन उस जोक के पीछे एक स्ट्रेंज सच्चाई भी थी। जिमी का ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी ही ऐसा था, सॉफ्ट, लॉयल, अंडररेटेड। वो बॉलीवुड के हीरो कम ऑडियंस के दोस्त ज्यादा लगते थे। और कैसे पंजाब ने उन्हें दिया दूसरा क्राउन, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप लोग सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जब बॉलीवुड ने जिमी शेरगिल को पूरी तरह सेलिब्रेट नहीं किया, तब पंजाबी सिनेमा ने उन्हें किंग बना दिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। और जिमी शेरगिल ने भले ही फिल्म माचिस में अपना रोल निभाया हो अच्छे से या फिर मोहब्बतें में, मगर उनको असली क्राउन पहनाया पंजाबी सिनेमा ने। जिमी शेरगिल ने पंजाबी फिल्म्स में एंट्री ली और वहाँ पिक्चर ही बदल गई। मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, दाना पानी, यहाँ ऑडियंस ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं स्टार ट्रीट किया। और इंटरेस्टिंग बात, जिमी कभी ओवर द टॉप पंजाबी हीरो भी नहीं बने थे। उनका स्टाइल वही था, कंट्रोल्ड, क्लासी, नेचुरल। बॉलीवुड में वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड थे, लेकिन पंजाब में रिस्पेक्टेड रॉयल्टी। और शायद इसीलिए पंजाब सिनेमा में आज भी जिमी को किंग कहा जाता है। और इसी के साथ साथ कैसे जिमी के रूट्स आज भी लोगों के दिलों में घर बसा गए हैं, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कुछ एक्टर्स ट्रेंड करते हैं, कुछ एक्टर्स टाइम सर्वाइव करते हैं। जिमी शेरगिल सर्वाइव नहीं हुए, वो साइलेंटली रेलेवेंट रहे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। बॉलीवुड एक फास्ट इंडस्ट्री है, यहाँ हर फ्राइडे नए फेजेस आते हैं, नए स्टार्स, नए इन्फ्लुएंसर्स, नए नेक्स्ट बिग थिंग। और इस नॉइज के बीच में एक एक्टर है जो कभी लाउडली अटेंशन डिमांड नहीं करता। नाम है जिमी शेरगिल। ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज, ना फेक लार्जर देन लाइफ इमेज, ना सोशल मीडिया पर ओवर ब्रांडिंग। फिर भी जब भी उनका नाम आता है, ऑडियंस के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिमी शेरगिल सिर्फ एक्टर नहीं लगते, वो रियल इंसान लगते हैं। उनके कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते, कभी हार्ट ब्रोकन लवर, कभी इग्नोर्ड हस्बैंड, कभी लॉयल दोस्त, कभी वो बंदा जो एंड तक सब सही करने की कोशिश करता रहता है। और शायद इसीलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी मोस्ट पीपल आरंट अल्फा हीरोज, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग, एग्जैक्टली लाइक जिमी कैरेक्टर। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जिमी शेरगिल कभी सीन स्टील करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन समहाउ वो याद रह जाते हैं। तनु एड्स मनु में देखो, जब मूवी में केओस था, कॉमेडी थी, लाउड कैरेक्टर्स थे, लेकिन जिमी का कैरेक्टर काम, मैच्योर और हर्ट, और ऑडियंस साइलेंटली उसके साइड पर थी। इंटरनेट ने मीम्स बना दिए, हर मूवी में जिमी शेरगिल की बंदी चली जाती है। फनी था, लेकिन उस जोक ने उन्हें और रिलेटेबल बना दिया, क्योंकि ऑडियंस को लगा ये बंदा हम जैसा अनलकी है। और ऑनेस्टली किसी एक्टर के लिए ये बहुत रेयर चीज होती है। पीपल डोंट जस्ट वॉच हिम, पीपल फील बैड फॉर हिम। पर पंजाबी सिनेमा में उन्होंने जो रिस्पेक्ट अर्न की, वो भी ओवरनाइट नहीं आई थी, सालों लगे, कंसिस्टेंसी लगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ईगो कंट्रोल। कई एक्टर्स जब लीड हीरो फेज से बाहर आते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन जिमी शेरगिल, उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स भी डिग्निटी के साथ किए, नेगेटिव शेड्स भी किए, कॉमेडी भी की, सीरियस रोल्स भी किए, वो अडेप्ट करते गए। और यही डिफरेंस होता है फेमस एक्टर और लास्टिंग एक्टर में। आज अगर आप किसी भी एज ग्रुप के मूवी लवर से पूछो जिमी शेरगिल कैसे लगते हैं, तो उनका आंसर यूजुअली सेम होता है, अंडररेटेड, अच्छा एक्टर है, बहुत जेन्युइन लगते हैं। और किसी एक्टर के लिए ये रिस्पेक्ट बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि स्टारडम टेम्पररी होता है, लेकिन गुडविल वो सालों साल चलती है। जिमी शेरगिल ने शायद बॉलीवुड का बिगेस्ट थ्रोन कभी नहीं जीता, लेकिन उन्होंने एक और रेयर चीज जीती, ऑडियंस का ट्रस्ट। और फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर फेमस हो सकता है, लेकिन हर एक्टर अपना सा नहीं लग सकता। तो ये थी जिमी शेरगिल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

कभी कभी लाइफ ना सीधे आंसर्स नहीं देती, वो सिर्फ एक सिचुएशन हमें देके छोड़ जाती है और बोलती है अब डिसाइड तुम करो भाई, और वही डिसीजन जो तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना देता है या फिर भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। खैर, इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ आपकी गीत। और आज जो कहानी मैं शुरू करने जा रही हूँ वो किसी ब्रांड की कहानी नहीं है, वो किसी करोड़ अरब के बिजनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक फैसले की। सो वेलकम टू बिजनेस अनप्लग्ड। और मैं यहाँ उन लोगों की बात करती हूँ जिन्हें दुनिया आज सक्सेसफुल कहती है, लेकिन जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे शुरू के फेज में सिर्फ कन्फ्यूजन देखा था, सिर्फ फियर, सिर्फ अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनप्लग्ड एक ऐसा शो है जहां सक्सेस को सेलिब्रेट करने से पहले हम स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली सक्सेस तब मीनिंगफुल होती है जब हमें पता हो उसके पहले क्या क्या टूटा था। वो मोमेंट जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी से हाँ बोल के नई जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ दरवाजे के हैंडल पर था पर दरवाजा अभी खुला नहीं, अगला कदम क्या होगा, वो दरवाजा खुलेगा या बंद रहेगा, और जो डिसीजन लिया गया क्या वो सही साबित होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ आपको बने रहना होगा मेरे शो में जिसका नाम है बिजनेस अनप्लग्ड। अगले लिंक में उस कदम के बाद की कहानी बताऊंगी जहां सोच सिर्फ अपनी नहीं रहेगी बल्कि पहली बार हकीकत से टकराएगी। सो स्टे ट्यून्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत। और कभी आपने सोचा है कि देश का बिजनेस बैकबोन बनता कैसे है? फैक्ट्रीज से, ब्रांड से नहीं, बल्कि लोगों की जिद से। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका नाम लेने से पहले थोड़ा सा रुकना जरूरी लगता है। इसलिए नहीं कि नाम थोड़ा मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि नाम के साथ वक्त जुड़ा हुआ है। आज मैं बात करने वाली हूँ घनश्याम दास बिरला के बारे में, यानी कि जीडी बिरला। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का नाम नहीं है, ये एक दौर का नाम है। वो दौर जब इंडिया अपनी पहचान ढूंढ रहा था और कुछ लोग सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं बल्कि पूरे देश का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे। जीडी बिरला किसी शॉर्टकट का हिस्सा नहीं रहे, किसी ओवरनाइट सक्सेस का एग्जांपल नहीं। वो उस जेनरेशन से आते हैं जहां चीजें धीरे बनती थीं, पर गहरी बनती थीं। और आज जब हम बिरला ग्रुप बोलते हैं ना, तो लोग कंपनीज देखते हैं, पर मैं आज कंपनीज की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ उस इंसान की, जब बिरला एक जिम्मेदारी थी, ब्रांड नहीं। जीडी बिरला ने बिजनेस एक ऐसे वक्त में शुरू किया था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के नीचे था, पर उस सिस्टम में इंडियन बिजनेसमैन को सिर्फ एक रोल दिया गया था, सप्लायर्स का। डिसीजन लेने का हक वो उनके लिए नहीं था, पर जीडी बिरला ने इस रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो इंडस्ट्री भी इंडियन होनी चाहिए और कंट्रोल भी। ये सोच आज सिंपल लग सकती है, पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। उनके सामने सिर्फ बिजनेस चैलेंजेस नहीं थे, उनके सामने सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स का डाउट, परमिशंस का डिले और हर कदम पर ये फीलिंग कि आप आउटसाइडर हो। और यहीं से उनके स्ट्रगल की असली कहानी शुरू होती है, न सिर्फ पैसे कमाने की स्ट्रगल बल्कि इज्जत के लिए स्ट्रगल। जीडी बिरला ने अपनी फैक्ट्रीज खड़ी की अपनी टर्म्स पे नहीं, सिस्टम के बीच रहकर, और हर स्टेप पर उन्होंने ये प्रूव किया कि इंडियन एंटरप्रेन्योर सिर्फ ट्रेडर्स नहीं, लीडर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके कदम बढ़ते गए, प्रेशर भी बढ़ता गया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सिंबल बन रहे थे। और जब आप सिंबल बन जाते हो ना, तो आपको चूज करना पड़ता है, चुप रहना है या स्टैंड लेना है। और जीडी बिरला के सामने एक ऐसा डिसीजन आने वाला था जो सिर्फ उनके बिजनेस को नहीं बल्कि उनके पूरे सफर को डिफाइन करता है। आज मैं कहानी को यहीं रोक रही हूँ क्योंकि अगला कदम सिर्फ बिजनेस का नहीं है, वो कदम ब्रिटिश सिस्टम के सामने सीधा खड़े होने का है। वो कदम लिया गया या फिर रोका गया, और उसके बाद क्या जीडी बिरला का रास्ता और मुश्किल हो गया, ये सब आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद इस गाने के बाद। तो गाना सुनिए, गाने के बाद मैं फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ जीडी बिरला के बारे में। कभी कभी ना जब इंसान के डिसीजन बहुत बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है ये सब अचानक हुआ होगा, पर सच ये है कोई भी बड़ा डिसीजन कहीं ना कहीं बचपन में ही तय हो जाता है, क्यों है ना। और आज मैं जीडी बिरला के उस हिस्से की बात करना चाहती हूँ जहाँ से उनकी सोच ने शेप लेना शुरू किया था। वैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन बचपन के बारे में बात करना भी तो जरूरी है ना दोस्त। वो वक्त जब उनके पास पावर नहीं थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। घनश्याम दास बिरला जी का बचपन किसी पैलेस में नहीं गुजरा, ना ही किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्फर्ट था। वो एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से आए जहाँ पैसा इम्पोर्टेंट था, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था डिसिप्लिन। उनके घर में बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट का जरिया नहीं माना जाता था, बल्कि बिजनेस एक जिम्मेदारी था, एक वर्ड था, और ये चीज उनके दिमाग में बहुत गहरी बैठ गई। उनकी एडुकेशन भी सिर्फ डिग्री तक लिमिटेड नहीं रही, वो चीजों को देखते थे, लोगों की सुनते थे और फिर क्वाइटली अपना कंक्लूजन बना लेते थे। जीडी बिरला ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि दुनिया सिर्फ मेहनत से ही नहीं चलती, दुनिया पावर स्ट्रक्चर से चलती है। और ब्रिटिश इंडिया में पावर का मतलब था कंट्रोल, कौन डिसाइड करेगा, कौन रूल बनाएगा और कौन सिर्फ फॉलो करेगा। ये सवाल उनके दिमाग में सिर्फ बिजनेसमैन के नहीं, एक इंडियन के तौर पर भी उठ रहे थे। शायद इसीलिए जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तब वो सिर्फ मार्केट नहीं देख रहे थे, वो सिस्टम भी देख रहे थे। और जब सिस्टम को आप समझ लेते हो ना, तब उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर पाते हो। और यहीं से हम उस मोमेंट के पास आ जाते हैं जहां पिछले लिंक में हम रुक गए थे। जीडी बिरला के सामने एक चॉइस खड़ी थी, एक तरफ था चुप रहकर ग्रो करना स्लोली सेफली, दूसरी तरफ था बोलना, स्टैंड लेना और कंसीक्वेंसेस फेस करना। और ये चॉइस सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, ये चॉइस थी आइडेंटिटी की। क्योंकि अगर वो चुप रहते तो शायद उनका बिजनेस चल जाता, पर उनकी सोच वहीं रुक जाती। और अगर वो बोलते तो रिस्क था कि सिस्टम उन्हें टॉलरेट ना करे, परमिशन डिले हो जाए, प्रोजेक्ट सटक जाए और प्रेशर बढ़ जाए। इस डिसीजन के वक्त उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, वो वैल्यूज जो बचपन से उनके साथ थी, वैल्यूज जो उन्होंने घर से सीखी थी, एडुकेशन से समझी थी और एक्सपीरियंस से और स्ट्रांग हुई थी। और फिर उन्होंने वो किया जो उस दौर में बहुत कम लोग कर पाते। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पिक्चर के लिए सोचा, पर इसके रिजल्ट इमीडिएट नहीं आए, एक्चुअली इसके रिजल्ट सबसे पहले उनके खिलाफ गए। और यहीं से जीडी बिरला के फेस का सबसे अनकंफर्टेबल फेस शुरू हुआ, वो फेस जहां प्रिंसिपल्स और प्रोग्रेस टकरा जाते हैं। आज मैं इस कहानी को इसी पॉइंट पर रोक रही हूं, क्योंकि अगला लिंक सिर्फ स्ट्रगल नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा कि जब आप सही होते हो तब भी सिस्टम आपको कितना टेस्ट करता है। क्योंकि जीडी बिरला का स्टैंड उनके बिजनेस को स्लो कर गया, फिर उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग कर गया। ये मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद, तब तक आप सुनते रहिए बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

फसाता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मन उदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

डीनो जेम्स की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, और इसी ट्रैक के बाद वेलकम बैक। कभी कभी ना जिंदगी हमें तुरंत पनिश नहीं करती, वो बस टाइम ले लेती है। जी डी बिरला के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इन्होंने जो स्टैंड लिया था उसके रिएक्शन तुरंत नहीं आए, पर जब आए वो धीरे धीरे हर तरफ से आए। ब्रिटिश सिस्टम ऐसे काम करता था, डायरेक्ट नो नहीं बोलता, वो रुकावट डालता था, डिले करता था, आपको थका देता था। परमिशन अटकने लगी, फाइल्स मूव नहीं होती थी, मीटिंग्स कैंसिल होती थी, और हर बार रीजन एक ही होता, प्रोसेस। पर जी डी बिरला जानते थे ये सिर्फ प्रोसेस नहीं है, ये मैसेज है। मैसेज ये है कि तुम अपनी लिमिट्स भूल रहे हो, और जब सिस्टम आपको ये याद दिलाने लगे ना, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। लोगों ने एडवाइस देनी शुरू कर दी, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों को अलग रखो, ज्यादा बोलना जरूरी है क्या? और ये एडवाइस गलत भी नहीं थी, क्योंकि रियलिटी ये थी कि जी डी बिरला के पास बहुत कुछ दांव पे लगा था। उनकी फैक्ट्रीज, उनके लोग, उनकी रेपुटेशन, और उनके साथ उन लोगों का फ्यूचर जो उनके साथ काम कर रहे थे। और यहीं से प्रेशर सिर्फ बाहर का नहीं रहा, प्रेशर अंदर का भी हो गया। कभी कभी ना सबसे मुश्किल सवाल बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। क्या मैं ज्यादा दूर आ गया हूँ? क्या मेरी सोच मेरी जिम्मेदारियों से बड़ी हो गई है? जी डी बिरला एक ऐसे बिजनेसमैन थे, हाँ, पर वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वो जानते थे अगर उनकी वजह से एक भी फैक्ट्री बंद होती है तो उसका बोझ सिर्फ उन पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने हर डिसीजन और ज्यादा सोच के लेना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक और चीज चल रही थी, ब्रिटिश अथॉरिटीज उनको क्लोजली देख रहे थे, कौन मिल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सा आइडिया किस मीटिंग में बोल रहा है। जी डी बिरला समझ गए थे ये बिजनेस सिक्योरिटी नहीं है, ये कंट्रोल है। और जब कंट्रोल और ज्यादा टाइट हो जाता है तो सबसे पहले आपको फ्रीडम से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसी फेज में उनके करीबी लोग भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गए, अब थोड़ा रुक जाते हैं ना, बाद में देखेंगे। और शायद यहीं पे कहानी का सबसे लोनली फेज शुरू होता है, क्योंकि जब आप बिल्कुल गलत भी नहीं होते और बिल्कुल सेफ भी नहीं होते तो आप अकेला पड़ जाते हो। जी डी बिरला के सामने अब एक नया सवाल खड़ा था, बिजनेस को बचाया जाए या प्रिंसिपल्स को। और ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं था, इस सवाल का जवाब उनके पूरे एम्पायर की डायरेक्शन डिसाइड करता। और आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। आज हम उस दौर में खड़े हैं जहाँ चीजें दिख रही हैं पर बोली नहीं जा रही। जीडी बिरला के आसपास सब कुछ पहले जैसा ही लगता था। फैक्ट्रीज चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, फाइल्स मूव हो रही थी, पर जो चीज मिसिंग थी वो थी राह की क्लैरिटी। सिस्टम ने उन्हें रोका नहीं, बस इतना किया कि आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। और जब ऐसा होता है ना तो समझ आ जाता है कि ये सिर्फ डिले नहीं है, ये एक सिग्नल है। जीडी बिरला इस सिग्नल को इग्नोर करने वाले लोगों में से नहीं थे। इन्होंने बोलना कम कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और ये साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं था, ये साइलेंस उनके डिसीजंस में भी आ गया। इस फेज में इनके सामने एक टेंशन नहीं थी, इनके सामने जिम्मेदारियों की एक पूरी लाइन खड़ी थी। वो लोग जो उनकी फैक्ट्रीज पर काम करते थे, वो फैमिलीज जो इनडायरेक्टली उनके हर डिसीजन से जुड़ी हुई थी। जीडी बिरला के लिए ये कभी सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, इसीलिए जब सिस्टम इन्हें प्रेशर में ला रहा था तो वो सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं सोच रहे थे, वो कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे थे। और इसी बीच उनके दिन का एक हिस्सा नंबर से निकाल कर कॉन्वर्सेशन में चला गया। ऐसी बातें जो न्यूज़पेपर में नहीं छपती, ऐसी मीटिंग्स जहां सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं होती, वहां बात होती है इंडिया के फ्यूचर की, इंडस्ट्री की डायरेक्शन की। और इस बात का डिसीजन लेने का हक किसी के पास होना चाहिए। जीडी बिरला अब सिर्फ बिजनेसमैन की तरह रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी पोजीशन को समझने लगे थे। और जब आप एक बार ये समझ जाते हो ना कि आप सिस्टम के लिए सिर्फ एक नाम नहीं रहे, तो फिर न्यूट्रल रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि अपनी कोशिश को और ज्यादा गहरा कर दिया। और शायद ये खामोशी ही थी जो सिस्टम को अनईजी कर गई, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि जीडी बिरला क्या बोलेंगे, सवाल ये था कि वो क्या करेंगे। तो अब आगे का रास्ता सीधा नहीं है, पर एक बात क्लियर है, अब जो भी होगा वो बिजनेस का हिस्सा नहीं होगा। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। स्टे विद मी।

स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। और आज मैं उस इंसान की कहानी को खोल रही हूँ जिसके नाम के साथ सिर्फ बिजनेस एम्पायर नहीं जुड़ता बल्कि एक सोच, एक प्रिंसिपल और एक लेगेसी जुड़ती है। जी डी बिरला के डिसीजन सिर्फ फैक्ट्रीज के लिए नहीं थे, वो डिसीजन थे पूरे देश के इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिए। जहाँ पहले इन्होंने खामोशी चुनी थी, अब उनकी स्ट्रेटेजी ने शेप लेना शुरू किया। रिस्क बहुत था, रेजिस्टेंस और ज्यादा थी, पर जी डी बिरला ने अपनी वैल्यूज और विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फैक्ट्रीज ने नाम किया, टीम्स ने फॉलो किया और धीरे धीरे सिस्टम को भी समझ आ गया कि ये इंसान सिर्फ सोच के लिए नहीं पूरे इकोसिस्टम के लिए काम कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी, इन्होंने एक बात समझ ली थी, सक्सेस सिर्फ बिजनेस ग्रोथ नहीं होती, वो होती है जब आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और फिर भी दुनिया आपको चैलेंज करती है। जी डी बिरला ने ये सीखा और ये उनकी स्ट्रेंथ बनी, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, सटल एक्शन और कंसिस्टेंसी। और ये जर्नी, ये स्ट्रगल और कैलकुलेटेड करेज, ये उनको लेगेसी बनाता गया। और जब आप इस कहानी के एंड पे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं, जो डिसीजन जी डी बिरला ने लिए, क्या वो सिर्फ बिजनेस के लिए थे या कुछ ज्यादा, कुछ टाइमलेस के लिए। यही वो मोमेंट है जहां आप खुद फील करेंगे, समझेंगे और आप इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि इम्पैक्ट कभी लाउडली अनाउंस नहीं होता, वो सटल और लास्टिंग होता है। और ऐसे ही एक इंसान का स्ट्रगल, एक विजन और एक लेगेसी हमारे सामने खड़ी होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। मेरा वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहो रेडियो महारानी कुछ हटके। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

और कुछ खामोशी में। FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। कल्चर कारवा की आज की कहानी आपको लेकर जा रही है एक ऐसे गांव जो सिर्फ रहस्य से बना हुआ है, कुलधरा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर थार के सीने में बसा एक गांव जो आज सिर्फ खंडर है। कहा जाता है ये गांव 13th सेंचुरी में बसा था पालीवाल ब्राह्मिन्स के द्वारा। बात की जाए पालीवाल ब्राह्मिन्स की, कहा जाता है पालीवाल सिर्फ पंडित नहीं थे, वो ब्रिलियंट इंजीनियर्स।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और कल्चर कारवा का आज का सफर हमें लेकर जा रहा है कुलधरा की तरफ। कुलधरा की उस रात की कहानी, कहते हैं वो रात सबसे मशहूर कहानी लिखी गई। कहानी कहती है जैसलमेर का एक अत्याचारी दीवान गांव की एक सुंदर लड़की पर बुरी नजर डाल बैठा। उस दीवान ने सबको हुक्म दिया, या तो शादी होगी या फिर पूरा गांव सजा भुगतेगा। पर उस रात गांव वालों ने एक फैसला लिया, लड़ने के बजाय

उसी रात खाली हो गई। गांव वाले अपना सब कुछ छोड़कर चली गई, पर जाने से पहले एक चीज छोड़कर, बद्दुआ। कुलधरा की वो रात की कहानी आज भी बद्दुआ और रहस्य में घूमती है। इस रहस्य के बारे में जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजी अंजलि और कल्चर कारवा का आज का सफर घूम रहा है कुलधरा के रहस्य की तरफ। बद्दुआ और रहस्य। बद्दुआ ये थी, जो यहाँ बसेगा उसका विनाश होगा। कहा जाता है ये गांव बद्दुआ और रहस्य से भरा है। तब से आज तक कुलधरा कभी पूरी तरह बसा नहीं। लोग कहते हैं रात को आवाजें आती हैं, परछाई दिखती है। यहाँ भूत नहीं, यहाँ अधूरी जिंदगी।

बद्दुआओं से भरा ये गांव क्या कभी बस सका या आज भी खाली है? और आखिर हिस्ट्री क्या कहती है, ये जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.67 पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि। और कुलधरा की ये कहानी हमें हिस्ट्री की तरफ लेकर जाती है। कहा जाता है कि हिस्टोरियंस कहते हैं शायद गांव के खाली होने की वजह रही भयंकर सूखापन या फिर बहुत भारी लगान लगाना। कहा जाता है कि पानी की कमी भी एक रीजन हो सकती है, पर सवाल आज भी वही का वही है। फिर सब एक साथ एक ही रात

और अगर आज बात की जाए इस जगह की, तो कहा जाता है कि कुलधरा आज एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। दिन में टूरिस्ट आते हैं और रात को सिर्फ कहानियां रह जाती हैं। कहा जाता है कि कुलधरा हमें डराता नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि जुल्म के आगे कभी कभी छोड़ देना हिम्मत होती है। तो ये थी कुलधरा की कहानी, एक गांव की जो कभी मिटा नहीं बल्कि बस छुप गया। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कल्चर कारवा के सफर को यहीं खत्म करने का। कल फिर से मिलेंगे एक नए सफर के साथ, एक नई कहानी के साथ, कुछ नई यादों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर आरजे एंजली साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: डोंट यू थिंक आज सुबह से मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रखा है, मन भी अच्छा हो गया, बट फिर उसके बाद एक बुरी खबर मिली और वो खबर सच ना हो बस मैं यही प्रे करता हूँ। क्या है वो खबर? हिटमैन शर्मा की खबर है। वो आपको पता है ना, रोहित शर्मा हमारे रोहित भैया कह रहे हैं लोग के रिटायरमेंट ले लेंगे वो। मेरे को बहुत बुरा लगा, मगर इसके बारे में करेंगे बात। अभी बस ये बताने आया था कि मैं आ गया हूँ और आप सभी के लिए गाना चलाने वाला हूँ। अनस्टॉपेबल है इस गाने का नाम और इसी तरह से मैं भी अनस्टॉपेबल रहने वाला हूँ। तो सुनिए इस गाने को।

तो देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन किस चीज का? नहीं नहीं इस हफ्ते का आखिरी दिन है, वर्किंग डे है आखिरी। और क्या आप लोगों को पता है, हमारे 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 7 भी नहीं 7.5 बोलूंगा, और 7.5 से भी 2 दिन ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, 7.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और बस दिसंबर 5 महीने दूर है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4 महीने दूर है। और बताओ, इतनी तेजी से टाइम बीत रहा है, और ऐसे ही टाइम बीत जाएगा आप लोगों का अगले 3 घंटे, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। अगले 3 घंटे तक आप सभी के साथ खूब सारी बातें होने वाली है। जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी को बता दूं, गौरव मेरा नाम है, मोस्ट वांटेड मुंडा बुलाते हैं मुझे जी। और इसी के साथ साथ एक नए पैकेजिंग के साथ मैं वापस आऊंगा, मतलब अभी तो आपके साथ ही हूँ, बट हाँ कुछ ट्विस्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, वो बाद में बताएंगे। और आज क्या हुआ, कैसा रहा आपका दिन, बताइएगा ज़रूर। और आज तो पार्टी वार्टी वाले सीन होंगे आप लोगों के, क्योंकि फ्राइडे है ब्रो। खैर, फ्राइडे को एक साइड रख देते हैं, कल के मैच की बात बहुत ज़्यादा होने वाली है आज, पहले ही बता देता हूँ। इसके साथ साथ बात करेंगे आज वर्ल्ड कप 2027 के बारे में। साल 2027 में वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप, T20 नहीं। तो फिर उसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को नहीं लिया जाएगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच है जो अब आने वाला है। करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। अब इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है, तो जी मेरा एक सिंपल सा नंबर है 9654896896। आप लोग इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं फेस्टिवल सीजन की, तो वो भी शुरू होने ही वाले हैं, बस देख लो अगले महीने से शुरू हो जाएंगे फेस्टिवल सीजन सारे के सारे। और वैसे भी अब तो सावन का महीना शुरू होने ही वाला है कुछ ही दिनों में, तो ये सारी बातें होने वाली है। मगर उससे पहले चलेंगे गाने, और गाने मेरे शो में चलते हैं ना जब, तो मिनिमम एड ब्रेक्स रहती है। तो सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 9.6 पर, मैं हूं द मोस्ट

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। देखो सबसे बड़ा सवाल है ये कि बच्चों में आज के संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब बड़े लोगों से पूछते ना तो उनके अलग आंसर रहते हैं। जो यंग माइंड्स है लाइक 22, 40 भी यंग माइंड्स में आते हैं, तो इन लोगों के जो जवाब होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और छोटे बच्चे कहते हैं हम तो संस्कारी हैं जी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं देखो आजकल के बच्चों में संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कुछ बच्चे आप लोगों को जानते होंगे बट आपको कभी नमस्ते नहीं बोलेंगे। और नमस्ते से ही संस्कार आंका जाता है क्या? हाँ भी और ना भी, चलिए इसको एक बार को साइड में रख देते हैं। फिर उसके बाद आती है हाजिर जवाबी, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास है टेक्नोलॉजी और वो इतना ज़्यादा घिर चुके हैं टेक्नोलॉजी से कि वो हम लोगों को तवज्जो ही नहीं देते। मैं सिर्फ छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक 13, 15, नहीं इनकी भी नहीं, इनसे भी छोटे बच्चे लाइक 6, 7, 8, 9, 10, उसके 11, 12 साल तक के बच्चों की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल मैं अपने तरफ से नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैंने अभी रिसेंटली देखा है अपने घर के पीछे वाले पार्क में। और वहाँ पार्क के अंदर, पार्क ही तो कहते हैं गली वाले, पार्क के अंदर बेसिकली एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उसकी बॉल चली गई अंकल के पास। अंकल ने बोला बेटा मुझे लग सकती है आप थोड़ा साइड होके खेल लो, अंकल ने बहुत प्यार से बोला। और बच्चा रिप्लाई करता है अंकल ऐसा है उधर चले जाओ आप, मतलब लिटरली बच्चे का रिप्लाई इससे भी ज़्यादा रूड था, मैं वो टोन भी नहीं बता सकता आप लोगों को यहाँ। तो इस पर आप लोगों का क्या ख्याल है बताइएगा जरूर, नंबर वही है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना अंडन, हाँ गाने का नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग गाना, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहे।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

जैसा आज दिन भर मौसम रहा था ना, सेम टू सेम वैसा ही ये गाना था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी थोड़ी देर पहले बच्चों के संस्कार की बात कर रहे थे हम लोग, तो जीविन नाम के शख्स का एक मैसेज आया, कह रहा है कि भाई हाँ सच में ऐसा हो रहा है। और जीवन भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब जितने भी लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, सभी से एक रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपना एरिया लिख के भेजा कीजिए कि आप फरीदाबाद में इस सेक्टर से बात कर रहे हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ इनके घर के आसपास भी जो छोटे बच्चे, मतलब ये सोसाइटी में रहते हैं आई गेस, क्योंकि इन्होंने ये बोला मेरी सोसाइटी में भी जो बच्चे हैं वो नमस्ते तो दूर की बात, कभी देख के स्माइल तक पास नहीं करते, मतलब जानते हैं इनको, इनको जानते हुए भी रिप्लाई नहीं करते। और अगर पूछ लो बेटा कैसे हो तो बस हल्का सा मुस्कुरा के चले जाएंगे वहाँ से, मतलब रिप्लाई भी नहीं करते आजकल के बच्चे। तो क्या ये एक घर के जो अपब्रिंगिंग होती है वो दर्शाती है, या फिर आजकल के बच्चे थोड़े से इंट्रोवर्ट हो गए हैं ये कह सकते हैं, या फिर क्या बोले इन चीज़ को, ये आप लोगों के ऊपर मैं सवाल छोड़ रहा हूँ। क्योंकि देखो काफ़ी बार ऐसा होता है बच्चा इंट्रोवर्ट रहता है, वो नहीं रिप्लाई देता। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आके पैर छूते हैं, और पैर छूना ही संस्कार नहीं होता। सबसे पहली बात, रिस्पेक्ट से बात करना भी संस्कार दिखाता है। खैर वापस आते हैं इस मुद्दे पे, तो आप लोग बताइए व्हाट डू यू थिंक कि संस्कार एक्चुअली में आते कहाँ से हैं, घर से, मोबाइल फोन से, या फिर अपने अंदर से। क्योंकि काफ़ी बार बच्चे मैं मानता हूँ अपने आप तक सीमित रहने वाले होते हैं, बट काफ़ी बार ओपन भी होते हैं। तो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो, और वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन वो भी आप लोग चेक करते रहिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर एक ऐसा गाना चला रहा हूँ जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हुआ था, और इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए बच्चे क्या क्या नहीं कर रहे, करेंगे उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

एक रील वायरल हो रही है और वो रील एक मंदिर की है और मंदिर के एंट्रेंस की वो रील है। वो कहाँ का मंदिर है इसके बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, बट ये रील देखने के बाद सवाल बहुत सारे खड़े हो गए मेरे में मन में, और साथ ही साथ लोग कमेंट्स में भी यही सवाल कर रहे थे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं ये भी बात बोल रहा था आपको कि रील वायरल हो रही है, एक्चुअली वो रील है एक छोटी बच्ची की, जो छोटी बच्ची हो क्या मतलब डांस कर रही है वो वो लिटरली मंदिर के जो एंट्रेंस है ना, लोग लाइन में खड़े हैं, वो लाइन के साइड में जाके डांस कर रही है और रील बना रही है। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि उनके फादर या फिर उनके साथ जो भी उनके गार्जियन होंगे वही उस रील को शूट कर रहे होंगे उनके मोबाइल से। एंड इतने में पीछे से पुलिस वाले आते हैं, जो गार्ड होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले लगे रहते हैं वहाँ पे, वो आते हैं, वो तुरंत बोलते प्लीज़ जाइए यहाँ से, मतलब दैट वॉज टू हार्श। अब वो क्या बोल रहे थे समझ नहीं आया क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था उसमें। तो यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं और सवाल ये है कि क्या पब्लिक प्लेस में ऐसा करना सही है। चलो ठीक है, बच्ची का अपना मन है, बच्ची अपना टैलेंट दिखाना चाहती थी रील के थ्रू, वो ठीक है एक हद तक समझ आता है, बट ऐसी जगह पे जहाँ पर दूसरे लोगों को परेशानी हो, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। तो इसके बारे में आप लोगों की भी कोई ना कोई राय होगी, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन जब मैंने खोल के देखा तो उसमें भी लोगों की बहुत सारी राय थी। लोग तो बहुत गलत गलत भी बोल रहे थे, लाइक लोग ये कह रहे थे कि अपब्रिंगिंग घर से शुरू होती है और ये चीज़ें सिखाते भी घर वाले ही हैं, तो पेरेंट्स को भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें ना हो। तो मैं भी बस यही बोलूँगा, अगर कोई भी इंसान रील बनाता है तो आप लोग रील बनाइए, बिल्कुल बनाइए, रील्स व्यूज़ के लिए बनाइए, बट किसी और को परेशान मत कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आपको ये गाना बहुत पसंद आएगा, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाली भर के नड़ा।

आप लोगों ने कल का मैच देखा या नहीं देखा? सच सच बताना, क्योंकि कल का मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। मैंने ये मैच देखना शुरू किया जब मैं आप लोगों से बात करके यहां से निकला और मैं घर पहुंचा, और घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले ये मैच लगाया और देखा कि स्कोर कार्ड में दिखाई दे रहा है कि इंडिया के 3-4 विकेट गिर चुके हैं और उनमें से विराट कोहली भी आउट हो गए थे। विराट कोहली 65 रन पर आउट हुआ। भाई ये लड़का अमेजिंग बैटिंग करी है भाई विराट भाई ने, और मैं बोलूं यार वो अगर शॉट नहीं लगाते, वो ज़रूरत नहीं थी उस शॉट की, बट अगर वो शॉट नहीं लगाते तो शायद स्कोर और भी ज़्यादा बन सकता था, 100 भी बन सकता था। खैर अभी इसके बारे में और बात करूँ तो एक बैट्समैन की तारीफ करनी पड़ेगी, वो है श्रेयस अय्यर, और दूसरे बैट्समैन पता है कौन है? वो है जसप्रीत बुमराह। भाई ये लड़का आया खेलने के लिए, 20 रन बना के गया 13 बॉलों में, नॉट आउट, 3 चौके 1 छक्का एक ही ओवर में वो भी, और ये ज़बरदस्त बैटिंग करके दिखाई। और सब लोग तालियां बजा रहे थे स्टैंड्स पर खड़े होके, सब लोग खड़े होके तालियां बजा रहे थे क्योंकि नो वन एक्सपेक्टेड इट। लाइक इन्होंने 20 रन की जो भागीदारी दी, 20 रन प्रोवाइड किए टीम इंडिया के स्कोर कार्ड में, बट वो काफ़ी नहीं रहे क्योंकि एट द एंड टीम इंडिया हार गई, हम सबको पता है। तो अब देखो ये जो पूरा एक घंटा है ना 6 से 7, तो मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे आज खूब सारी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का लास्ट मैच होने वाला है अगला मैच। क्या ये सच है? करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। दिलजीत दोसांझ की आवाज में टेंशन है, गाने का नाम, मतलब टेंशन लेनी नहीं है।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: ईशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता हूँ।

264 रन्स और इससे भी कम रन बनाए थे श्रीलंकन टीम ने। किसके अगेंस्ट? रोहित शर्मा के अगेंस्ट। मैं टीम इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अकेले ही खड़े होकर 264 रन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये है द हिट मैन शर्मा, यानी कि रोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। 264 ओडीआई में इनका हाईएस्ट है, अनबीटन रहे थे 121 के साथ T20Is में, और अगर टेस्ट मैच की बात करूं तो टेस्ट मैच में भी इन्होंने 212 रन बनाए हैं। अग्रेसिव एलिगेंट स्ट्रोक प्ले और अनमैच्ड एबिलिटी, हर सेंचुरीज को कन्वर्ट कर देते एक मैच विनिंग स्कोर में। और इसी के साथ साथ मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहूँगा, वो ये कि लोग कह रहे हैं कि अब इनको खेलते हुए नहीं देख पाओगे आप लोग अगले मैच के बाद। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉर्ड्स का जो ये मैदान में मैच होने जा रहा है जो कि 19 जुलाई को है, यानी कि संडे को है, उसके बाद आप लोग इनको नहीं देख पाओगे क्योंकि ये शायद रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि 2027 में, लोग नहीं बेसिकली रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 19 जुलाई के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे और 19 जुलाई को ही शायद ये रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। तो आई डोंट वॉन्ट हिम टू रिटायर राइट नाउ, क्योंकि 2027 में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रोको यानी कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीम इंडिया को साल 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। और अगर मैं फिर से बात करूँ इनके जितने भी मैचेस रहे हैं उनकी, तो देखो सबसे पहली चीज़ 2024 अभी हाल ही में बेंगलोर में मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर इन्होंने 121 रन बनाए थे 69 बॉल्स में, और फिर उससे थोड़ी सी और पीछे चले जाते हैं 2014, और ये साल था अमेजिंग क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने 173 बॉलों में 33 चौके और 9 छक्कों की बदौलत 264 रन बनाए थे, और श्रीलंका तो 264 भी नहीं बना पाई थी, और वहीं पर 212 इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाए थे 2019 में, जो कि था टेस्ट मैच। तो ये तो था जी स्कोर सारा का सारा रोहित शर्मा का, मगर करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में और भी बात, लेकिन इस गाने के बाद। दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में गाना ललकारा, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: अर्ज करते हैं
0: ईशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपने घर से तो ही पी, मैं आता हूँ।

0: हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

ये गाना टीम इंडिया नहीं गाएगी, कभी नहीं गाएगी, ले ले तू रिहाई ले ले मेरे तो नहीं, और ना ही रोहित शर्मा गाएंगे गाना, क्योंकि रोहित शर्मा अभी नहीं छोड़ के जा रहे कहीं पर भी, रिटायरमेंट अभी नहीं लेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ। जितने भी रिपोर्ट्स आ रही है ना, सब लोग यही कह रहे हैं कि इस साल 2026 में आखिरी वनडे खेलने वाले रोहित शर्मा, और मैं तो नहीं चाहता भाई ये हो, और अगर ऐसा हो गया तो सोचिए क्या होगा, मतलब साल 2027 के वर्ल्ड कप में क्या होगा। खैर बता दूं आपको, 19 जुलाई को मैच है हमारा लॉर्ड्स के मैदान में, और लॉर्ड्स का मैदान वही मैदान है जहां पर एक बार दादा ने अपनी टी शर्ट उतार के घुमाई थी, मेरे दादा ने नहीं, सौरभ गांगुली दादा जिनको कहते थे, हाँ, तो उन्होंने टी शर्ट उतार के घुमाई थी अच्छे से, वही है लॉर्ड्स का मैदान, और वहां पर मैच होने जा रहा है टीम इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, और दोनों एक एक से बराबरी पे चल रहे, मीन्स ड्रॉ चल रहे सीरीज में, 3 मैचों की सीरीज है ये, और देखते हैं कि इस वाले मैच में क्या होगा, यानी कि फाइनल मैच में क्या होगा। क्या हमें विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी आती दिखेगी, क्या हमें रोहित शर्मा के बल्ले से सेंचुरी आती दिखेगी, या फिर कहूँ मैं श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल इन दोनों के बल्ले से सेंचुरी आती दिखेगी, या फिर हो सकता है बुमराह पंजाबी ले जाए, यानी कि 5 विकेट से एक साथ ले जाए, और एक जो नया बॉलर है ब्रार भाई, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, और एक तो हाइट, कमाल की हाइट है उसके पास, तो ये मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। मगर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड कप साल 2027, उसका कुछ फिक्स्चर टाइप का आया है, कितनी टीम्स आ रही है, कौन कौन है, सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइक यू
4: आशा इस पंजाब।

0: पॉप कल्चर।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपको पता है साल 2027 में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है ओडीआई, उसमें 14 टीम्स रहने वाली है और एक टीम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो क्वालिफाई कर भी पाएगी या नहीं ये समझ नहीं आ रहा, और उसका नाम है जिम्बाब्वे या फिर नीदरलैंड्स। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड मैं जो बात करने जा रहा हूँ, देखो पहले होगा राउंड वन। राउंड वन में जो बॉटम तीन टीम्स है ना उनके मैच होंगे और जो दो टीमें होगी वो क्वालिफाई करेगी। जैसे बॉटम टीम्स कौन कौन सी बता दूँ आपको, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड, ये तीन टीमें हैं। और अगर स्कॉटलैंड जीतती है एग्जाम्पल तो वो राउंड टू में चले जाएगी, और राउंड टू में होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी, जहाँ पर सात सात टीमें होंगी और सब आपस में भिड़ेंगे। और फिर उनमें से मान लेते हैं कि टीम इंडिया जीत गई, मान लेते हैं टीम इंडिया इधर से जीती ग्रुप ए से, ग्रुप बी से कोई और टीम जीती, तो उनका सेमीफाइनल में मैच होएगा, सेमीफाइनल नहीं माफ़ कीजिए सुपर सेवन में मैच होगा। और सुपर सेवन के बाद भी उनमें से सिर्फ टॉप फोर टीम्स ही आगे जाएंगी, जिनके बीच मुकाबला होगा सेमीफाइनल्स में और फिर होगा फाइनल्स। तो मतलब पहले जो ग्रुप स्टेज के मैच है ना, उसके बाद भी एक और चांस मिलेगा आपको लीग तरह से खेलने का। हाँ, लीग की तरह नॉकआउट नहीं होगा, मतलब अगर हार गए तो बाहर नहीं हो जाओगे, सुपर सेवन में पहुंचने का मौका मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं 14 टीम, 14 टीम के बाद सुपर सेवन, सुपर सेवन के बाद सुपर फोर, जिनके बीच में होगा एक नॉकआउट मुकाबला जिसे कहते हैं सेमीफाइनल्स, और उससे जो जीतेगा वो पहुंचेगा फाइनल्स में, और जो फाइनल्स जीतेगा वो पहुंच जाएगा वर्ल्ड कप, मतलब वो ले जाएगा अपने घर वर्ल्ड कप। और मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप ले जाएगी, पता नहीं क्यों बस लगता है। तो चलिए इसके बारे में बातें होती रहेंगी, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। और वैसे भी आज तो फ्राइडे है, आप लोगों के कोई ना कोई तो प्लान्स होंगे, तो अगर कोई प्लान्स हैं तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है जी मेरा 9654896896। वापस आकर फरीदाबाद के बारे में बात करते हैं कि फरीदाबाद में कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ पता चल रहा है, अगर आप लोगों को भी पता चल रहा है तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और जहाँ फरीदाबाद की बात आ गई, तो फरीदाबाद के लड़के की आवाज़ में ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

आज आसमान में नमी तो थी, बट उसके साथ साथ एक रिलीफ था कि बार बार ना बादल आ रहे थे और हवा भी काफी अच्छी चल रही थी सुबह से ही। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अभी शाम हो चुकी है मगर ऐसा लग नहीं रहा कि अंधेरा होने वाला, जल्दी नहीं होगा, अभी थोड़ी टाइम लगेगा अंधेरा होने में। और अभी मैं ये बात और कहना चाहता हूँ वो ये कि देखो अपने ना जो फ्राइडे सैटरडे संडे ये तीन दिन होते हैं ना, इसको ना अच्छे से एंजॉय किया करो, लाइक टेंशन दूर करके एंजॉय किया करो। हो सकता है आप किसी एक साइड हसल में भी लग सकते हो, लगिए बिल्कुल लगिए। और वापस आते हैं अब मौसम के ऊपर। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि देखो कल चांसेस है 20% और फिर परसों चांसेस है 60%, मतलब कि संडे को बारिश के चांसेस 60% है। तो अगर संडे को बारिश आ जाए तो अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि मौसम में ये जो नमी है, ये जो उमस है, ये कम हो जाएगी तो अच्छा ही हो जाएगा, मज़ा ही तो आ जाएगा। खैर मैं एक और बात बोलूँगा यहाँ पे, मंडे को 75% बारिश की चांसेस है, यानी कि अब हाँ गर्मी से राहत आपको मिलने वाली है। और अगले हफ्ते दिखा रहा है कि 3 से 4 दिन बरसात होगी ही होगी, और इस बार एलनीनो वापस ना आए तो बढ़िया ही है, क्योंकि एलनीनो इफेक्ट की वजह से ही मानसून इस बार थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा हुआ है। और दिल्ली एनसीआर को तो बारिश नसीब ही नहीं हो रही। लास्ट वीक ट्यूसडे वेंसडे हुई थी बारिश, थर्सडे को भी सुबह सुबह थोड़ी सी हुई थी, मतलब इस वेंसडे नहीं पिछले। तो अब मैं बस यही प्रे करता हूँ कि जल्दी से बारिश हो जाए और इस गर्मी से सबको राहत मिल जाए, दिल्ली एनसीआर वालों को और खासकर फरीदाबाद वालों को। और जहाँ पर भी नाले बंद है ना वो जल्दी से खुल जाए, ताकि जो पानी ऊपर से बरसेगा वो नीचे से तुरंत निकल जाए, ताकि कहीं पर भी वाटर लॉगिंग ना हो और लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। यही एक रीज़न है, जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, उसी वजह से लोगों को बरसात फिर पसंद नहीं आती। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, वापस आकर बात करते हैं फेस्टिवल सीजन की, क्योंकि वो शुरू ही होने वाले हैं। कौन कौन से बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

गाना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और ये दिल लगाना बना था, ये तो शायद इंस्टाग्राम से ही वायरल हुआ है गाना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड अब इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फोटोज डालने का टाइम आने वाला है, यानी कि देखो मॉनसून शुरू हो चुका है, सावन का महीना, और अभी फिर कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो आप इंस्टाग्राम पर हर जगह कांवड़ वाली रील्स देखेंगे। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी 15 अगस्त की तैयारी, और 15 अगस्त को तो हम सब एक दिन के लिए देशभक्त बन जाते हैं। तो एक दिन के लिए देशभक्त नहीं बनना है आप लोगों को, आपको रोज़ाना देशभक्त रहना है, हमेशा रहना है, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। चलिए उन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, जिम्मेदारियों के बारे में, बट एक बात मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि पतंग उड़ाने का टाइम आने वाला है, तो पतंग उड़ाएंगे। फिर उसके बाद घेवर आ चुका है मार्केट में ऑलरेडी, और घेवर के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है ना। तो अभी जितने भी लोग डाइट कर रहे हैं एक दो दिन के लिए छोड़ सकते हैं या फिर एक मील के लिए छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग घेवर के तो शौकीन है ही। अब घेवर के बाद बारी आती है किस चीज़ की, सोचिए ज़रा। घेवर के बाद बारी आती है श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की, और उसी के साथ साथ आएगी रक्षाबंधन। तो मतलब फेस्टिवल सीजन शुरू ऑलमोस्ट होने वाला है। फिर उसके बाद श्राद्ध आ जाते हैं कुछ दिन के लिए, और फिर श्राद्ध के जैसे ही खत्म होते हैं फिर आएगी नवरात्रे, और नवरात्रों में तो जो माहौल बनता है पूरे इंडिया का वो तो देखने लायक होता है। नवरात्रों के बाद फिर दिवाली का इंतज़ार, और फिर फेस्टिव सीज़न शुरू हो जाता है, ऑफिशियल फेस्टिव सीज़न कहूँगा मैं, साथ ही साथ बोलूँगा गिफ्टिंग सीज़न। तो अभी से ही वो फेस्टिव वाइब्स और वो खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, तो आप लोग भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए, और मैं भी तैयार हूँ। खैर वापस अगर बात करेंगे जिम्मेदारियों के बारे में, जो 15 अगस्त के आसपास होती है हमारी जिम्मेदारियाँ, करेंगे उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। केसरिया है ये गाना फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

आवाज अच्छी नहीं आई नो, बट गाना काफी अच्छा था ना। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, 7:33 मेरे स्टूडियो क्लॉक में। और इसी के साथ साथ मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि गाना बहुत अच्छा था। खैर, वापस आते हैं जिम्मेदारियों के बारे में। देखो 15 अगस्त आने वाला है, एक दिन के लिए बहुत सारे लोग देशभक्त बन जाएंगे, मगर मैं बोलना चाहूंगा एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए देशभक्त बनिए। कैसे बन सकते हैं? देखो मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग कि आप लोग सर्विस ज्वाइन कीजिए, आप लोग मिलिट्री ज्वाइन कीजिए, नहीं नहीं, आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जिम्मेदारियां, यानी कि आपको कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है। दूसरी चीज, आप लोगों को सड़क किनारे कूड़े में आग नहीं लगानी है, और फिर उसके बाद अपने घर के आसपास सफाई का ध्यान देना है। देखो बस सिर्फ कूड़े कूड़े की बात हो रही है, और हाँ अगर घर से भी आप अपना कचरा बाहर दे रहे हैं, मतलब जब आपके घर पे कलेक्ट करने के लिए आते हैं ना गार्बेज, तो उनको दे रहे हैं, तो सूखा और गीला कचरा अलग कर लिया कीजिए। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, काफ़ी बार ऐसा होता है ना हमारे घर में कांच की बॉटल टूट जाती है या फिर कांच का ग्लास टूट जाता है, तो फिर हम लोग उसका क्या करते हैं? क्या आप लोग उसको पन्नी में डाल के फेंक देते हैं? यही करते होगे। तो इसके ऊपर एक नई ट्रिक आई है मेरे पास, क्या है वो ट्रिक उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट अभी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 15 अगस्त आ रहा है और सिर्फ 28 दिन बचे हैं, तो प्लीज़ उस दिन को छोड़कर पूरे ज़िंदगी भर के लिए देशभक्त बन जाइए और अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का मतलब एक हक अदा कीजिए। इतने भारी भरकम वर्ड बोल दिए मैंने। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे प्यार भरे गाने चलाऊंगा, उन्हीं में से ये गाना स्टेविन बेन की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

साता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मनुदास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: आई डोंट नो व्हाई बट ये गाना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। डीनो जेम्स की आवाज़ में था ये गाना और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि आपके घर में कोई कांच का ग्लास टूट गया हो? नहीं, कोई मोटिवेटिंग बात नहीं बोलने वाला, उसको कैसे डिस्कार्ड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक चीज़ होती है कि अगर आपके घर में कांच की बॉटल टूट गई है ना, तो उसको ना एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और हो सके तो बिल्कुल क्रश कर दीजिए। अब क्रश कैसे कर सकते हैं? हैमर से कर सकते हो आप लोग क्रश, बट अगर वो भी नहीं कर सकते तो उससे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, उसको एक पन्नी के अंदर डालना है और ऊपर से एक कपड़ा, मतलब मोटा कपड़ा जो कि आपके यूज़ में नहीं है, पुरानी टी शर्ट हो सकती है, पुरानी टी शर्ट से लपेट दीजिए। अब उसके ऊपर आप लोग वो मोटी वाली टेप होती है ना, मोटी मीन्स वो चौड़ी वाली टेप, जो एक तो सेलो टेप होती है नॉर्मल वाली, फिर उससे थोड़ी सी ब्रॉड टेप आती है ना, हाँ वाइड वाली, उससे पूरा लपेट दीजिए और फिर उसको डस्टबिन में डालिए। तो क्या होगा कि किसी और को कांच नहीं चुभेगा। बस इतना सही कहना चाहता था मैं। और इसी के साथ साथ आज तो भैया फ्राइडे है, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? जैसे आप लोगों के प्लान्स हैं वैसे ही मेरे भी प्लान्स हैं, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। बस वही इजाज़त मांग रहा था आप लोगों से, तो निकलता हूँ मैं। मिलूँगा आप सभी से कल शाम फिर से सेम टाइम सेम जगह 5 से 8। कल नहीं, माफ़ कीजिए, अब तो फ्राइडे है, अब मिलेंगे सीधे मंडे की शाम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वापस आएगी गीत विदेश के बाद ही यहाँ मिलेंगे आप सभी से मंडे की शाम। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड।
1: Yeah. Sorry.

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आप जल्दी से आ जाइए मेरे साथ ताकि बहुत सारी बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है फराज। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, फराज के नगमे यहाँ पर मैं कुछ छेड़ने वाली हूँ, कुछ उनकी बातें जो वो कह गए, उनकी बातें दिल से निकली और लोगों के दिल तक सीधा पहुंच गई। ऐसी ही बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगी। और फराज की बात हो रही है और उनकी वो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। और बहुत ही गहरी बात कह दी है फराज ने इस शायरी के थ्रू। वो कहना चाहते हैं कि अक्सर हम जिन अच्छे लोगों को सोचकर उनके पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यार ये इंसान बहुत खूबसूरत है, जैसा बाहर से दिखता है तो शायद अंदर से भी वैसा होगा। लेकिन यहाँ फराज कहना चाहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। हो सकता है कि जो खजाने आप ढूंढना चाहते हैं, जो किसी इंसान की इंसानियत आप ढूंढना चाहते हैं, वो आपको खराबों में मिल जाए। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ढूंढ किसे रहे हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फिलहाल वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। फराज के बारे में बातें चल रही हैं, उनकी खूबसूरत शायरी जो मुझे लगता है हम लोग आए दिन सुन ही लेते हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पर शायरी का जो एल्गोरिथम आया है ना वो बहुत खास है। चलिए कम से कम हम वो पुरानी शायरियों से तो रूबरू हो रहे हैं। तो इसी बात पर ना मुझे फराज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी याद आई है कि जहां के शोर से घबरा गई क्या, तुम अपने घर को वापस आ गई क्या। यहां कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। ना थी इतनी कजा ताजा मुसाफत, पुराने हम सफर याद आ गए क्या। मेरी गर्दन में बाहें डाल दी हैं, तुम अपने आप से उकता गए क्या। यानी कि फराज इस शायरी में कहना चाहते हैं जो इंसानियत, शायद ये हमारे जितने भी शायर थे और जितने भी कवि थे ना, इनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये शायरी में यही कहना चाहते हैं कि इंसानियत कैसे गायब हो जाएगी इंसानों से, कि यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थीं, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। और ऐसी ही बातें जारी रहेंगी, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। अगला गाना है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत, और फराज की बातें चल रही हैं, फराज की बातें चल रही हैं। और फराज की वो शायरी मुझे याद आ रही है यहाँ पर, स्पेशली इस फिल्म के टाइटल को टच करती हुई वो शायरी है, जब कोई इंसान आपको बहुत टाइम बाद मिलता है ना, और वो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस इंसान को अपना नहीं पाते हैं, और अक्सर आपके दिल में ये बात रह रह कर आती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, क्योंकि तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का भी हौसला है मुझे, दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। और फराज ने इस बात के थ्रू ना उन हजारों लोगों को एक कड़ा तंज कसा है, जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी ना मेला है, बस उन्हें लोग ही लोग चाहिए। और यहाँ वो कहना चाहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, उन्हें सिर्फ एक हम सफर चाहिए, पूरा एक मेला नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे, एक मुसाफिर जो है, एक जो इंसान है, वही मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। तो फराज की खूबसूरत बातें चल रही है। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे शो है इश्क बाजियां।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, सेफ रहो, स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और बातें चल रही हैं फराज की। और फराज की एक शायरी अभी मैं पढ़ रही थी और मुझे ना इस शायरी से वो बात याद आई कि जब दो लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं, होता है ना अक्सर हमारी जिंदगी में ये बात, मुझे लगता है हर किसी के साथ हो ही जाती है, जब वो जमाने के लिए नहीं बदलते एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं और एक दूसरे से नजरें मिलाते नहीं हैं, नजरें बचाते हैं। इसी बात पर लिखा है फराज ने कि दुख छुपाए हुए हैं हम दोनों, जख्म खाए हुए हैं हम दोनों, तू कभी चांदनी थी और धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा सर झुकाए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे की चाहत को अब भुलाए हुए हैं हम दोनों। इश्क कैसा कहां का अहद फराज, घर बसाए हुए हैं हम दोनों। जब दो लोग एक दूसरे से ही अजनबी हो जाते हैं, इस पर फराज ने बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिखी है। ऐसी ही कुछ बातें और मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज में ये गाना है, और देखिए गाने का टाइटल भी खूबसूरत है और फराज की जो ये अगली शायरी है ये भी खूबसूरत है, क्योंकि इन्होंने खूबसूरत किसी शख्सियत के लिए लिखा है जिनसे शायद या तो ये प्यार करते थे या किसी के लिए भी इन्होंने लिखी है कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं, सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे उसे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को उसे जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सोचे जब फराज ने इतना खूबसूरत लिख दिया है तो वो शख्स कितना खूबसूरत होगा। और फिलहाल वक्त है यहाँ पर ऐसे ही खूबसूरत से गाने का, गाना है अगला शोर इन द सिटी से साइबो गाना है, और इसके बाद मैं रेट्रो इश्क लेकर आ रही हूँ, कहीं जाइएगा मत, इंतजार कीजिए और फिलहाल गाना सुनिए।

है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजिया में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए, और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ

कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई, हम चलते।

कुछ वादे सच्चे होते हैं लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाहकर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहां बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजू की दिल दिया गल्ला.

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूं दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप। शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाएं, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्कबाज़ियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
4: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
5: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए OTP, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा। और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है रमेश बाबू। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दियां गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

0: कबीर
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर आग ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: काम तो बताओ।
1: काम सीधा सादा है,
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है,
0: शादी और तुमसे।
1: शादी का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो,
0: नो ना,
1: सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

सजदा है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: टियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो अरूर सेफ्टी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े उमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजे सरकार।
1: फैन थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

हर कोई याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पेड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: खैरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। श्रीमद् भगवद गीता के 5 खास उपदेश, जिनका पालन करके आप अपने अमूल्य जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली सीख के साथ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवद गीता का हर अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हर मनुष्य कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता रहता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो।

विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।

चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे,